सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है

Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

सूरत दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Bye.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:07 हो रहे हैं। 4 घंटे बैठेंगे एक साथ, करेंगे दिल खोल के बात, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। और बातें तो हम यहाँ पे करेंगे करेंगे, गाने भी सुनाएंगे भाई, बहुत प्यारे वाले।
1: जब से चढ़ गया रे।
0: मगर शो की शुरुआत मैं करना चाहूंगा एक बहुत ही क्यूट और प्यारे गाने से।
1: वो देखने में कैसी सीधी सादी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है।
0: तो गाने का सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं, बातों का सिलसिला शुरू करने वाले हैं, बस इंतजार है आपके मैसेजेस के सिलसिलों का। तो जल्दी जल्दी मुझे मैसेजेस कर दीजिए। आप 3311063 पर आपने गुड मॉर्निंग कोड्स भेज सकते हैं, हाल बता सकते हैं, बताइए क्या चल रहा है जिंदगी में, कैसा चल रहा है सब कुछ, हफ्ता कैसा जा रहा है, आज क्या क्या करने का इरादा है, क्योंकि इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। तो फिलहाल चलिए किक स्टार्ट करते हैं आज के शो को। ये है रेडियो ऑल 106.3 FM, बिंदास मॉर्निंग्स में मैं हूं आपका मेजबान सुदेव जियो बिंदास।

0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: This is Deepika Padukone.
2: Deepika Padukone.
1: Radio Olive 106.3.
3: I'm a number one. Radio Olive.
4: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
0: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
6: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन Call 4411 1133.

0: अरिजीत सिंह की आवाज में जीनियस मूवी का गाना हमने सुना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सदैव। स्टेशन क्लॉक में 6:19 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है एक मैसेजेस का सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं। मतलब जो मेरे पास मैसेजेस आए हैं वो मैं पढ़ने वाला हूँ। और चलिए हम देखते हैं, सतीश कुमार जी का मैसेज आया है मेरे पास। उन्होंने एक फोटो भेजा है मुझे और गुड मॉर्निंग लिखा है उन्होंने अपने रनिंग ट्रैक का, जो है मुझे फोटो भेजा है। 7.64 किलोमीटर जो है सुबह सुबह भाग के खत्म कर चुके हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग द डे ऑन अ हाई नोट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के। उसके साथ साथ जुल्फी भाई का मैसेज आया है। जुल्फी भाई ने मैसेज किया है और लिखा है कि गुड मॉर्निंग सक्सेसफुल, एक वर्ड लिखा है और उसके जो है फुल फॉर्म लिखे हैं। उसमें लिखा है एस फॉर सी योर गोल, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑब्स्टिकल्स, सी फॉर क्रिएटिंग अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर, एंड दूसरा सी इज फॉर क्लियर योर मेंटल सेल्फ डाउट, ई फॉर एम्ब्रेस ऑल चैलेंजेस, एस फॉर सैक्रिफाइस फ्री टाइम, एस फॉर शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट, एफ फॉर फीड योर फोकस, यू फॉर यूटिलाइज ऑल अपॉर्चुनिटीज, एंड एल लर्न फ्रॉम ऑल फेलियर्स करके। वाह यार वाह, बहुत बढ़िया। सक्सेसफुल को आपने काफ़ी अच्छी तरीके से जो है डिफाइन किया है, मतलब एक्सपैंड किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखिए। थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ शशिकांत पाटिल जी का भी मैसेज आया है और उन्होंने मुझे एक फोटो भेजा है जिसमें लिखा है कि गुड मॉर्निंग, टू मेक अ डिफरेंस इन समवन्स लाइफ यू डोंट नीड टू बी ब्रिलियंट रिच ब्यूटीफुल और परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू केयर एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू केयर। भाई काइंडनेस जो है आजकल के ज़माने में मुझे लगता है कि एक लग्जरी बनती जा रही है, मतलब ज़्यादा लोग रखते नहीं अपने आसपास। उसके साथ साथ नाजरीन जी का मैसेज भी आया है, लिखा है गुड मॉर्निंग, मे द ब्राइटनेस ऑफ दिस मॉर्निंग स्प्रेड जॉयज इनटू योर लाइफ, विशिंग यू अ परफेक्ट डे करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफ़ी बढ़िया और बिंदास दिन मैं विश करता हूँ। और जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया आप सभी को काफ़ी बढ़िया मॉर्निंग मैं विश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का दिन जो है काफ़ी बढ़िया जाए। और थोड़ी देर में जब गानों के उस पार हम वापस आएंगे तो एक सवाल लेकर आएंगे, तो तैयार हो जाइए ब्लैक बोर्ड स्टोरीज के लिए। यहाँ पे प्ले करते हैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है। कूल सॉन्ग।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: A ring for the newly married, cute little bangle for the newborn.
2: Arey yaar, holiday season is here, aur phir wahi gifting contention. Phir Malabar Gold and Diamonds, Golden Summer ke saath, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
4: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन Call 4411-1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:33 हो रहे हैं और यहां पे चलिए शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड स्टोरीज को।
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में आज का सवाल काफी सरल है। सवाल ये है कि QWERTY कीबोर्ड का जो लेआउट है वो किसने इन्वेंट किया था। ठीक है, QWERTY कीबोर्ड का लेआउट है वो किसने इन्वेंट किया था। बेसिकली टाइपराइटर बनाया था उन्होंने QWERTY लेआउट में, जो अभी आजकल हम कीबोर्ड देखते हैं QWERTY लेआउट में, एक इंसान ने बनाया था। किसने बनाया था ये आपको बताना है मुझे। आप मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर तत्काल प्रभाव से, तुरंत से पहले अभी के अभी मुझे बताइए कि QWERTY कीबोर्ड लेआउट किसने इन्वेंट किया था। अभी यहाँ पे फरक शबीर की आवाज में नौटंकी साला मूवी का एक बहुत ही प्यारा गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे जो है मैंने एक सवाल पूछा था, सवाल मैंने ये पूछा था कि क्वर्टी कीबोर्ड का लेआउट जो है वो किसने इन्वेंट किया है। तो ये सवाल क्यों पूछा मैंने, उसका कॉन्टेक्स्ट पहले मैं बता देता हूँ। आज जो है वर्ल्ड टाइपराइटर डे है और टाइपराइटर के आने के बाद जो एक अलग ही दौर चला, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लिखने के लिए, फिर कुछ भी ड्राफ्ट करने के लिए टाइपराइटर का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल रहा था। और मम्मी ने मुझे बताया था कि उन्होंने टाइपिंग कोर्स के लिए जाती थी पहले, क्योंकि किसी भी ऑफिस में जॉब लगने के लिए एक टाइम पे टाइपिंग कोर्स का रिक्वायरमेंट होता था कभी कभी, अगर आप एक क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जाते हो बैठने के लिए। तो मम्मी बताती कि मैं टाइपिंग कोर्स के लिए जाती थी, उसके बाद फिर वहाँ से वह दिल्ली आई और अकाउंटिंग सीखी हुई थी, वहाँ से फिर एक फर्म में गई। तो वहाँ पे नया टाइप का एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर जैसा कुछ था जिसका फंक्शनैलिटी मम्मी को उतना पता नहीं था, और उसके बाद उन्होंने खुद सीखा। इन सब के बारे में मम्मी बता दी। तो टाइपराइटर जब मैं छोटा था मम्मी के ऑफिस में जाता था तो वहाँ पे एक सेक्शन होता था जहाँ पे टाइपराइटर रखे रहते थे, मैं जाके ऐसे ऐसे टाइटर करता, वो चलता नहीं था, ठीक है, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं था, वो ऐसे उन्होंने रखा हुआ था। मे भी कंप्यूटर के और जब पूरा दौर शिफ्ट हो रहा था उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि यार इसे ऐसे मॉन्यूमेंट रख देते हैं, ठीक है, गए हुए सालों का एक क्या कहते हैं एक मोमेंटो जैसा। तो मैं उसे यूज़ करता, तो मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता था, उसका साउंड काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो आज के दिन अगर टाइपराइटर के बारे में हम नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे कंप्लीट होगा आज का दिन। और सवाल मैंने पूछा था, मुझे जो है मोस्टली जवाब सही आए हैं, सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। क्रिस्टोफर लैथम शोल्स, ये हैं वो व्यक्ति जिन्होंने क्वर्टी कीबोर्ड लेआउट जो है उसको इन्वेंट किया था। ये एक अमेरिकन न्यूज़पेपर एडिटर और इन्वेंटर हैं 1870s के दौर में, ठीक है। इन्होंने ये लेआउट इसलिए बनाया था ताकि जो इससे पहले जो टाइपराइटर लेआउट्स आए थे, कीबोर्ड लेआउट्स जो आए थे, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही थे, मगर कभी कभी क्या होता था कुछ वर्ड्स या फिर कुछ लेटर्स जब आसपास आते थे टाइप करते वक्त, उनका जो वो एक मैकेनिज्म होता था उसमें जिसको हम की मतलब एक चीज़ था, मैं बताता हूँ एक मिनट पढ़ के बताता हूँ, टाइप बास, या वो वर्ड मैंने यहाँ लिख रखा था वही भूल गया था मैं, हाँ। तो टाइप बास जो है जैम हो जाते थे, तो ये टाइप बास जब जैम हो जाते थे तो ढंग से टाइपिंग नहीं हो पाती थी, क्योंकि उस टाइम के टाइपिस्ट जो है बहुत जल्दी जल्दी टाइप करते थे। तो इन्होंने इस लेआउट के साथ टाइपिस्ट को थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए भी फोर्स किया, उसके साथ साथ बहुत ही अच्छे से उस पूरे मैकेनिज्म को इन्होंने एफिशिएंट बना दिया। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग, इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:07 हो रहे हैं और यहां पे जो है टेम्परेचर देख लेते हैं। अभी 36 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा बह रही है। मेरे मन में यही सवाल पनप रहा है कि क्या ये हवा थोड़ी ठंडक दे देगी। चलो कोई नहीं, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, लोएस्ट जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कैसा लग रहा है बाहर, कैसा है अभी। और मैं तो देखिए स्टूडियो के अंदर बैठा हूँ, तो गर्मी कितनी है या फिर कितनी ज़्यादा महसूस हो रही है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, मगर आपके लिए कैसा है बाहर माहौल ज़रा मुझे बताइए। अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं तो फोटो खींच के भेज दीजिए मुझे 3311063 पर, तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले अभी के अभी। और यही बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, तुषार जोशी की आवाज़ में सुनते हैं चांद मेरा दिल मूवी का गाना।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे. मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी. विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hello, I'm Neena Gupta.
4: Neena Gupta.
3: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.
5: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.
6: रेडियो ओलिव नंबर वन.
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
8: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई अभी स्टेशन क्लॉक में 7:18 होने वाले हैं और मैं एक चीज जो है आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि मेरे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं, मुझे कुछ कुछ फोटोज जो है भेजे गए हैं, उसके साथ साथ और भी लोगों ने जो है मुझे मैसेज किया है। जैसे कि संधु जी का मुझे मैसेज आया है। संधु जी ने मुझे लिखा है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हैव ए नाइस डे, हरपाल संधु फ्रॉम जिगरी दुकान। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपको भी काफी बढ़िया और बढ़िया दिन जो है हम विश करते हैं। साजिद भाई का मैसेज आया है, साजिद भाई ने जो है मुझे मैसेज भेजा है, बोला है कि गुड मॉर्निंग साजिद हियर, बाहर बहुत गर्मी है। साजिद भाई ख्याल रखिए यार, पानी वानी थोड़ा अच्छे से पिएगा, आप लोग हाइड्रेटेड ज़्यादा रहिएगा, कोशिश करिएगा, मगर ओवर हाइड्रेशन भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं बता देता हूँ क्योंकि एक बार मैंने एक दफ़ा एक केस कहीं पर सुना था जहाँ पर एक लड़के ने काफ़ी हेल्थी लाइफ स्टाइल जी रहा था, जिम में जाता था, अच्छे से खाना खाता था, मगर दिन में 10-12 लीटर पानी पीता था। ऐसे 10-12 लीटर पानी नहीं पीना है हमें, ठीक है, हमारे बॉडी वेट के हिसाब से जो है हमें पानी पीना होता है। कहा जाता है कि अगर आप हर 20 kg के लिए 1 लीटर पानी पीना होता है, अगर 60 kg है वेट तो फिर 3 लीटर पानी पीना है, और अगर आपका वेट जो है 100 kg है तो आपको 4-5 के बीच में पानी पीना है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि ओवरडू करना है, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। अगर आप फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तो ही उस अमाउंट तक आपको पानी पीना है, अगर उतना एक्टिव नहीं है तो हल्का हल्का सिप करके भी पी सकते हैं। और यही बात बताते हुए हम जो है आगे बढ़ना चाहेंगे। एक और मैसेज आया है हमारे पास रवि भाई का, रवि भाई ने मैसेज भेजा है, लिखा है गुड मॉर्निंग सुदेव भाई, टेक केयर यू टू, रवि करके। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आप भी एकदम बढ़िया तरीके से आपका दिन जो है स्पेंड कीजिएगा। और इरफान भाई का भी मुझे मैसेज आया है, उन्होंने लिखा है गर्मी बहुत है भाई, और एक ऑडियो भेजा है भाई, ऑडियो जो है लोड नहीं हो रहा, सॉरी, इसलिए मैं प्ले कर नहीं पा रहा, मैं अलग से सुन के आपको रिस्पॉन्स जो है दे देता हूँ। थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे जबरदस्त हिट सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।
2: टफ काम और भी आसान, कार्नल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्नल ग्रुप नाउ।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन Call 4411-1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई यहां पे वक्त आ चुका है फिट है तो हिट है का।
1: फिट है तो हिट है,
0: फिट है तो चलिए आज हम बताते हैं फिटनेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसके बारे में शायद आपने बहुत बार सुना होगा, मगर क्यों ऐसा होता है थोड़ा हम फैक्चुअली बात करेंगे। देखिए, हंसी जो है एक इमोशनल रिएक्शन ही नहीं है, ये बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन जो है, हम जब हंसते हैं तो कम हो जाते हैं, जब जेन्युइनली हम हंसते हैं तो कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन जो है वो कम हो जाते हैं। इससे बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड से हट जाती है और रिलैक्स्ड फील करने लग जाती है। हैप्पी केमिकल्स रिलीज होते हैं, हंसी से ब्रेन में एंडोर्फिन्स और डोपामिन रिलीज होते हैं, जिसके कारण हम जो है अच्छे मूड में आ जाते हैं, नेचुरली हैप्पी फील करने लग जाते हैं। हार्ट और ब्लड वेसल्स को बहुत बेनिफिट मिलता है इसमें। जेन्युइन लाफ्टर से ब्लड वेसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है। टेम्परेरी तौर पर ब्लड प्रेशर भी थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। बॉडी का टेंशन रिलीज हो जाता है। हंसते टाइम मसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर रिलैक्स करते हैं, इससे बॉडी में एक स्ट्रेस रिलीज जैसा फील होता है, जैसे हल्का हल्का लोड उतर गया हो, है ना। और इम्यूनिटी को इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलता है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस इम्यूनिटी वीक करता है, लेकिन हंसी जो है स्ट्रेस को कम करता है, इम्यून सिस्टम को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। तो सिंपल लाइन में यही है कि भाई हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, और यहाँ पे गाने सुनते हुए आगे बढ़िए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn? Arre yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting ka tension. To phir Malabar Gold and Diamonds, golden summer ke saath, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
1: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाई फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
3: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन Call 4411-1133.

0: मैं हूँ सारिका।
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे एक बहुत ही बढ़िया खबर हम आपके साथ जो है शेयर करना चाहेंगे। पब्लिक वर्क्स अथॉरिटी अजगल ने समर सीजन में वर्कर्स की सेफ्टी के लिए स्ट्रिक्ट हीट प्रोटेक्शन मेजर्स जो है इंप्लीमेंट किए हैं। हर साल 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक जो है 10 AM से 3:30 PM के बीच ओपन एरियाज में काम जो है वो बैन रहेगा। कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स की कंप्लायंस क्लोजली मॉनिटर की जाएगी। और वर्क सेफ्टी मेजर्स के बारे में अगर हम बात करें तो शेड और एयर कंडीशन रेस्ट एरियाज प्रोवाइडेड किए जा रहे हैं। कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर, AC ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। वर्कर्स को सेफ्टी गियर और PPE भी दिया जाता है। और हीट स्ट्रेस मॉनिटरिंग के लिए अगर हम देखें तो डेली वेदर मॉनिटरिंग की जा रही है। हीट स्ट्रेस इंडिकेटर्स यूज करके वर्क एडजस्ट या टेम्परेरली स्टॉप किया जाता है। इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए फील्ड ड्रिल्स और इंस्पेक्शंस भी होती हैं। ट्रेनिंग और अवेयरनेस भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वर्कर्स और सुपरवाइजर्स और सेफ्टी टीम को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। हीट स्ट्रेस सिम्टम्स और फर्स्ट एड पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाए जा रहे हैं जिससे जो है ऐसे सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना है लोग सीख पाए। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदा।

0: presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं. यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहां हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन.
3: इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन.
2: FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
4: इन एसोसिएशन विद.
5: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
6: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
5: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर.
7: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है. और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. Culture travels, football connects, and Hiwari is bringing Qatar to the world.
8: Doctor on air. Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare.
9: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
8: Doctor on air. Doctor on air. Brought to you by Naseem Healthcare.

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दें? मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स. अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस. और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी. विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे.
0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहां हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम इट्स एन इमोशन.
2: इट्स नॉट जस्ट अ गेम इट्स एन इमोशन.
0: FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
3: इन एसोसिएशन विद.
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
4: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर.
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
6: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you are listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
2: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई स्टेशन क्लॉक में 8:21 हो रहे हैं और यहां पे हम बात करने वाले हैं उस खेल के बारे में जो है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
0: तो भाई यहाँ पे बहुत ही बढ़िया खबर आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। कल का मैच अगर हम देखें तो कल अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रिया मैच में 2-0 से अर्जेंटीना ने मैच को जो है जीत लिया। दोनों गोल जो है मेसी ने दागे और से वो है उन्होंने अपना रिकॉर्ड बना दिया। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे लीडिंग टॉप गोल स्कोरर जो है वो बन चुके हैं। यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एम्बापे पीछे ही है, ठीक है। मतलब अभी प्रॉबेबली लोग यही कह रहे हैं कि ये मेसी का लास्ट सीजन हो सकता है, बट एम्बापे के पास और भी चांसेस हैं। ही माइट ओवरकम दिस रिकॉर्ड, वो तो हमें देखना ही पड़ेगा। वो इस सीजन में होगा या अगली सीजन में होगा उसके बारे में हमें थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस रफ्तार से वो भी बढ़ रहे हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। और उसके साथ साथ फ्रांस और इराक के मैच के बारे में बात करें तो दो गोल जो है एम्बापे ने स्कोर किए। 3-0 से इराक को फ्रांस ने हरा दिया। अब इसमें बताने वाली बात या फिर एकदम देखने वाली बात यह है कि स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द स्टार्ट, फर्स्ट विसिल के बाद से ही फ्रांस काफ़ी अग्रेसिव तरीके से जो है खेल रहा था और उस अग्रेशन को जो है इराक होल्ड नहीं कर पाया। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो बीच में थंडरस्टॉर्म के कारण मैच को रोकना पड़ा। उसके बाद मैच स्टार्ट हुआ, फिर 3-0 से जो है फाइनली फ्रांस ने जो है मैच जीत लिया। और एक और मैच जो है अभी हुआ वो है नॉर्वे और सेनेगल का, जिसमें उन्होंने मैच जीत लिया, 3-2 से मैच जीत लिया और वो राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। और एक और मैच जो है अभी हो चुका है जॉर्डन वर्सेस अल्जीरिया, जिसे 2-1 से अल्जीरिया ने जीत लिया है। और आज रात को दो मैचेस होने वाले हैं, पोर्चुगल वर्सेस उज़्बेकिस्तान और इंग्लैंड वर्सेस घाना। अब इंग्लैंड काफ़ी अच्छे फॉर्म में है, पिछले मैच को उन्होंने जीता है, काफ़ी डोमिनेटिंग तरीके से जीता है, तो उस एक हाई के साथ जो है वो इस मैच में आएंगे। पोर्चुगल के लिए सच बताऊं तो ये बहुत बड़ा एक वेकअप कॉल भी होना चाहिए कि भाई उन्होंने पिछले मैच में जिस तरीके से परफॉर्म किया एज ए टीम, बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस था, क्योंकि पोर्चुगल जैसी टीम से ये एक चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं है। मेनली बात यह है कि क्यों हम देख रहे हैं बाकी सारे टीम्स जो है, स्पेशली अगर इस साल के अर्जेंटीनियन स्क्वाड को या फिर पिछले बार के अर्जेंटीनियन स्क्वाड को अगर हम देखें, एज ए स्क्वाड वो बहुत ही बैलेंस तरीके से अच्छे से खेल रही थी। पोर्चुगल ऐसे स्क्वाड नहीं परफॉर्म कर पा रही है, उनके बीच में जो भी इंटरनल चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मलाल है, अगर वो सॉर्ट आउट करके ग्राउंड में नहीं आ रहे हैं देन दिस वोंट बी अ गुड सीजन फॉर देम, एस्पेशली रोनाल्डो के लिए, क्योंकि उनका तो लास्ट सीजन ही हो सकता है वर्ल्ड कप का। तो एज ए फैन, एज ए फुटबॉल फैन, हम सब यही चाहते हैं कि भाई पोर्चुगल एज ए टीम, एज ए यूनिट बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अगर वो करेगी तो रोनाल्डो के चांसेस भी अच्छे हो जाएंगे। और इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो मैंने एक बार पॉइंट आउट किया था, मैं रिपीट करना चाहूँगा, अगर अर्जेंटीना के परफॉर्मेंस को हम देखें, स्पेशली मेसी के परफॉर्मेंस को हम देखें, तो भाई वो बंदा फ्री हो चुका है, वो उठ चुका है, उसका हो चुका है, देख लिया उन्होंने सब। अभी कोई डर नहीं है उनके मन में, कोई टेंशन नहीं है, एक्सपेक्टेशन का कोई लोड नहीं है, ही इज़ एन्जॉइंग इट। एंड वेन समवन इज़ एन्जॉइंग देयर क्राफ्ट, तब बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस बाहर आता है, और वही हम देख रहे हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
5: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
3: कमर्शियल बैंक. योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन Call 4411-1133.

0: इस मूवी ने बाल लंबे करना और सुजुकी हायाबुसा इन दोनों का जो ट्रेंड शुरू करवाया था भाई, अलग लेवल का। साइकिलें चलाकर लोग उसको हायाबुसा बोलते थे यार, मैं अभी भी याद कर रहा हूँ। साइकिल में रेस लगाते थे, स्किड मारने की कोशिश करते थे, ड्रिफ्ट करते थे, गिरते पड़ते थे, मगर खुद को जॉन अब्राहम से कम नहीं समझते थे। आज भी नहीं समझते, बिल्कुल नहीं समझते। साइज वाइज हम बिल्कुल सेम है, बट मसल उनके थोड़े अच्छे हैं, मेरे नहीं है, वही एक फर्क है। मगर हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज मैं आपको बताना चाहूंगा फुटबॉल के बारे में, स्पेशली फीफा के बारे में। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर। In association with
2: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
3: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
2: your trusted remittance partner.
0: ओके, तो यहाँ पे हम सब जानते हैं मेसी ने जो है वर्ल्ड कप में गोल स्कोर करने का जो रिकॉर्ड जो है उन्होंने तोड़ दिया है। ऐसे ही एक प्लेयर के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जस्ट फॉन्टेन है उनका नाम। ये एक लेजेंडरी फ्रेंच फुटबॉल स्ट्राइकर थे जिनके पास एक ऐसा रिकॉर्ड है, एक ही सिंगल फीफा वर्ल्ड कप में इन्होंने सबसे ज्यादा गोल्स जो है स्कोर किए हैं, 13 गोल्स ड्यूरिंग द 1958 टूर्नामेंट इन स्वीडन। और 1958 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो हर एक ब्राज़ील फैन के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ब्राज़ील का सबसे पहला वर्ल्ड कप विन था। वो फाइनल में स्वीडन के साथ उन्होंने खेला था, और उसमें खास बात यह है कि फाइनल जब वो खेल रहे थे स्वीडन के साथ, देवर नॉट अलाउड टू वियर देयर येलो जर्सी, उनका जो येलो जर्सी है उनसे बोलता कि नहीं, क्योंकि स्वीडन की नेशनल टीम वो पहनेगी, और एक रॉयल डिक्री निकला था एंड उन्होंने ब्लू जर्सी में खेला। और उस एक फाइनल में, उस एक पूरे टूर्नामेंट ने, पूरे वर्ल्ड ने विटनेस किया एक टैलेंट को, जो फिर फुटबॉल के सबसे बड़े ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स में उन्होंने अपना नाम बनाया। मैं तो मानता हूँ ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, वो है पेले। 17 साल की उम्र में जिस तरीके से उन्होंने जोगो बोनीटो, जो एक स्टाइल है, काफ़ी डिस्टिंक्टिव स्टाइल है फुटबॉल का, ब्राज़ील के वहाँ से आया है ये, उससे पूरी दुनिया को उन्होंने जो है अपने वश में कर लिया भाई। लोग दीवाने हो गए थे जिस तरीके से उस ब्राज़ीलियन स्क्वाड ने खेला, स्पेशली 17 साल के पहले ने खेला, लोग खड़े हो गए, ताली बजाने लग गए। और 1950 के वर्ल्ड कप फाइनल के बहुत ही शर्मनाक हार के बाद ब्राज़ील रिडीम्ड देमसेल्व्स इन द 1958 फीफा वर्ल्ड कप। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद इरफान की आवाज़ में मर्डर 2 का गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: A ring for the newly married? Cute little bangle for the newborn? Arre yaar, holiday season is here aur phir wahi gifting ka tension. To phir Malabar Gold and Diamonds, Golden Summer ke saath, buy a free cash vouchers on diamond and precious gem jewelry purchases. Plus, exchange your gold jewelry and upgrade to the latest designs without any loss. Aur suno, there's more. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
3: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million rials cash prizes.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 rials growth पर पाइए एक coupon.
3: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
2: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra coupon or mega draw ticket.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू रेडियो ऑलर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे भाई एक बहुत ही बढ़िया बात आपके साथ हम शेयर करना चाहेंगे। देखिए, हॉलीडे सीजन जो है धीरे धीरे पास आ रहा है, और इस हॉलीडे सीजन आप अपने लव्ड वंस को जो है सरप्राइज दे सकते हैं उनके घर में, उन्हें गिफ्ट देकर, वो भी मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स की तरफ से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स में गोल्डन समर ऑफर चल रहा है। यहाँ पे डायमंड या प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेज पे आप पा सकते हैं फ्री कैश वाउचर्स, और आप अपने पुराने ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी जो है, जो आपने कहीं से भी परचेज किए हो, बिना किसी लॉस के उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस ऑफर का लुत्फ उठाने के लिए इंतजार किस बात का है, आज ही जाइए मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के एक शोरूम में, और आप इस चीज़ को जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस ऑफर का जो है लुत्फ उठा सकते हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि भाई जब भी आप ये गिफ्ट अपने लव्ड वन को दें, तो ये वाला गाना प्ले करके ही दें।

बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैं आपके जज्बातों को अल्फाजों को समझता हूँ, और इसी के साथ साथ बता दूं कि नेक्स्ट आवर में एक बहुत ही बढ़िया गाना जो है आपका इंतजार कर रहा है। उसके साथ एक और गाना, ये जो है थोड़ा एक पुराने लेजेंडरी गाने का मुझे लगता है एक रिप्राइज्ड वर्जन है, नया वर्जन है। अभी फिलहाल हम शफकत अमानत अली खान की आवाज में सुनते हैं जन्नत 2 का गाना, ये है रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: टेनमैन की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 9:08 हो रहे हैं और यहां पे जो है हम चलिए थोड़ी टेक्नोलॉजी रिलेटेड बातों के बारे में जरा ध्यान देते हैं, थोड़ा फोकस डालते हैं। अभी वॉल्व ने जो है अपना स्टीम मशीन गेमिंग पीसी जो है स्टार्ट किया है सेल करना। उसका जो प्राइस रेंज है वो है $1049 और उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें आई हैं। मतलब स्टीम मशीन जो है एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल गेमिंग हार्डवेयर है जिसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा इसके लिए लोग जो हैं स्पेशली गेमर्स जो हैं देख रहे हैं इस चीज़ के लिए। और उसके प्राइस के बारे में मैंने थोड़ा बताया। आप या तो खरीद सकते हैं वॉल्व को या फिर खुद बना सकते हैं। ऐसे आजकल जो है लोग, मैंने कई बार देखा है जब भी वो गेमिंग की बात करें तो वो अपना पूरा रिग सेट करते हैं। इंडिया में मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो गेमिंग का पूरा रिग सेट करते हैं, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए जो है अलग से कंपोनेंट्स को एक साथ लाकर मिक्स एंड मैच करते हैं। बट मुझे लगता है स्टीम मशीन रिव्यू जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से जो है आ रहा है। अब ये कैसा होगा, इसका रिव्यू कैसा है, लोगों ने किस तरीके से इसको यूज़ किया है या फिर उनको पसंद आया नहीं आया, इसके बारे में तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा जानने के लिए। बट प्राइजी अगर ये है कि नहीं, अगर आप पूछो तो मैं बोलूँगा यस, ये प्राइजी है। इट डेफिनेटली मेक्स यू थिंक अबाउट कंसिडरिंग प्री बिल्ट पीसी या फिर खुद एक पीसी हम बिल्ड करें, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर हैं। मगर स्टीम ओएस के साथ आता है और भी चीज़ें जो हैं इसमें, यूज़र ऑप्शंस जो रहते हैं, इसलिए ठीक है थोड़ा वारंटेड है। बट गेमिंग कंसोल्स के मामले में एक नया एंट्रेंट भी है ये, देखते हैं किस तरीके से ये अपना जादू चलाता है। फिलहाल यहाँ पे है जवानी तो इश्क होना है मूवी का गाना प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
2: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: मुश्किल बड़ा ये प्यार है तो क्यों करने जा रहे हो, घर पे बैठो पढ़ाई करो काम करो किताबें पढ़ लो, नहीं प्यार करना है, ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो मुश्किल चीजों में अगर तुम अपना दिल लगा के करोगे तो मुश्किल चीज आसान लगने लग जाती है, उसके बारे में गाना नहीं बनाना होता। ये बात मैंने बोली तो तनीषा मुझे ऐसे देख रही है कि जैसे मैंने सारे पेंडिंग काम कंप्लीट कर दिए। एक्चुअली सारे पेंडिंग काम कंप्लीट कर दिए इसलिए वैसे देख रही थी। बट या जोक्स अपार्ट, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताना चाहेंगे। दोहा थिएटर फेस्टिवल का 30th एडिशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और ये 4 दिन तक चलने वाला है। ओपनिंग सेरेमनी QNCC के अल्मायसा थिएटर में हुई थी। ऑफिशियल्स, आर्टिस्ट और थिएटर लवर्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट किया। लोकल थिएटर कंपनीज ने परफॉर्म भी जो है यहाँ पे किया और वो और भी करेंगे आने वाले 4 दिनों में। इस फेस्टिवल का इंपॉर्टेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ। फेस्टिवल जो है कतर के थिएटर मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए है। थिएटर को फादर ऑफ आर्ट्स के रूप में हाईलाइट किया गया है और सोसाइटी और रियल लाइफ इश्यूज को स्टेज पर प्रेजेंट करने का एक प्लेटफॉर्म भी है। और जो फर्स्ट प्ले ओपनिंग प्ले है उसका नाम है अंडर द रबल और इसका जो थीम है ये सर्वाइवल के ऊपर है, एग्जिस्टेंस और साइकोलॉजिकल स्ट्रगल के ऊपर है। और उसके साथ साथ और भी जो प्लेज आने वाले हैं जिनके बारे में बहुत बात हुई थी वो है द डिवाइडिंग सिटी, द ब्लैक हेरॉन करके, और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ यहाँ पे होने वाले हैं जैसे कि डिस्कशंस, क्रिटिसिज्म सेशंस, प्ले एनालिसिस, ये सब होने वाले हैं, फीडबैक सेशन, ये सारी कुछ चीज़ें वहाँ पे होने वाली हैं। तो जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, थिएटर लवर्स हैं, उनके लिए सही में ये जो है एक बहुत ही बढ़िया एक एक्सपीरियंस होने वाला है। फिलहाल यही बात बताते हुए हम भी ज़रा आगे बढ़ते हैं, ज़बरदस्त हिट प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
4: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: अखियों से गल करने वाली और बातों से तो ऑब्वियसली करने वाली एक ऐसी मोहतरमा हमारे सामने आ चुकी है जिनके बारे में बोलने के लिए शब्द नहीं बचे हमारे पास, अल्फाज नहीं बचे, मतलब क्या ही बताएं इनके बारे में। आप खुद बताओ, बताइए नाम, बताइए अपना।
1: रोज रोज सेम चीज ही बोलता है, तू कुछ नया लेकर आना, ये क्या बात होती है?
0: इसलिए तो बोला कि आप बोलो, मेरे पास बचा नहीं है कुछ बोलने के लिए आपके बारे में।
1: ऐसे नहीं होता।
0: अरे थोड़ा एक पहले माइक के पास आओ।
1: ऐसे नहीं होता सुदेव,
0: माइक के पास आने के लिए बोला, ऊपर नहीं जाने के लिए माइक
1: आ तो गई।
0: हाँ ठीक है, अब बताओ अपने बारे में कुछ नया बताओ।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज तनीषा।
0: ये भाई बहुत नई बात कर दिया आपने यार, मैं तो मतलब क्या बताऊं, मेरे तो भाई पर छक्के उड़ गए यहाँ पे। पर कच्चे होता है ना, पर कच्चे होता है। हाँ
1: नहीं,
0: पर कच्चे होता है,
1: नहीं होता है,
0: पर छक्के नहीं होते।
1: I don't know what that word is, but yeah, it is not that what you're saying.
0: Okay, whatever it is. Tell me something about yourself.
1: इंटरव्यू चल रहा है
0: ना? हाँ चल रहा है।
1: कौन है तू?
0: मैं हूँ।
1: तो क्यों ले रहा है तू मेरा इंटरव्यू?
0: क्योंकि मैं हूँ।
1: Excuse me, I should be taking your interview.
0: Okay, please लीजिए मेरा interview. Fine, please.
1: मैं नहीं जाना चाहती आपके बारे में कुछ भी।
0: नहीं बता भी नहीं रहा ना मैं।
1: पूछ ही नहीं रही ना।
0: नहीं, बताना ही नहीं है।
1: पर आओ जाओ।
0: अच्छा चलिए पंजाबी थोड़ी गाल कर लेते हैं।
1: काम की बात कर ले जिसके लिए बुलाया है मुझे। इधर उधर की बातें करवा लो बस।
0: नहीं तुसी दसो ना।
1: मैनू नहीं दसना कुछ भी।
0: क्यों मेरे नाल गल नहीं करोगे?
1: नॉट एट ऑल।
0: ये जो मैंने अभी बोला सही बोला क्या? मुझे किस्सा याद आया जब मैं और तनीषा एक बार जा रहे थे।
1: ये बात करने के लिए बुलाया था तूने मुझे?
0: अरे नहीं नहीं सुनो तो सही, वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, मगर ये किस्सा तो सुन लो, बहुत बढ़िया किस्सा है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं सुनो, मैं और तनीषा जा रहे थे उबर में। मैंने तनीषा से ऐसी बैठ के बोला की तनीषा जी चलिए पंजाबी थोड़ी गल कर लेते हैं। तनीषा ने अपनी टोरंटो वाली पंजाबी शुरू कर दी। जो भैया चला रहे थे गाड़ी, भाई उनकी हंसी छूट गई। उन्होंने दो मिनट के लिए मुझे लगी गाड़ी रोक के हंस देगा बंदा, ठीक है। उसके बाद मैंने पूछा सर आप पंजाबी हैं? बोला कि नहीं सर मैं राजस्थान से हूँ, मगर ये पंजाबी नहीं है मुझे पता है। तो आज आप क्लियर कर दो, आपको पंजाबी आती है नहीं आती है, बताओ।
1: Tell me one day when I said ki I am like very much fluent and native in Punjabi.
0: मैंने ये नहीं पूछा ना, मेरा सवाल।
1: Don't tell me that.
0: सवाल क्या है?
1: No, but where does this question come from?
0: देखो भाई जब इसे पता चल गया कि मातृभाषा में जवाब नहीं दे सकते तो अंग्रेजी पकड़ ली। हाँ
1: ये तो कोई बात ही ना
0: हुई। हाँ क्या हुआ फिर, क्या बात हुई ये बताइए।
1: ये तो बहुत irrational, illogical और irrelevant हो गया।
0: इन्हीं तीनों शब्दों को हिंदी में बोलिए जरा।
1: जा रही हूँ यहाँ से, मैंने भी बात करनी थी।
0: अच्छा ठीक है, जिस चीज के लिए मैंने आपको बुलाया था उसके लिए बात करते हैं। तो सुबह जब मैं आज आ रहा था, एक डिबेट चल रहा था, डिबेट नहीं था, एक डिस्कशन चल रहा था मेरा और निशा के साथ। तो आज मैं बिल्कुल फॉर्मल में आया हूँ, ब्लैक शर्ट ब्लैक पैंट और मैंने टैन कलर का एक ब्लेजर भी रखा है। तो बात करते हैं
1: फॉर अ ब्लेजर।
0: या बिल्कुल, मतलब गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही मुझे, सर्दी लग रही है मुझे। तो हम बात करें तो निसार में यही बोले थे कि यार दुनिया इतना ज्यादा बिगड़ चुकी है कि वो इंसान के कैरेक्टर के वैल्यू को उसके ड्रेसिंग पे रखती है।
1: Yeah.
0: कि अगर वो अच्छा कपड़ा पहनता तो अच्छा इंसान है, और वो अच्छा कपड़ा नहीं पहनता तो अच्छा इंसान नहीं है। या फिर True. उसके स्ट्रेंथ को, उसके एबिलिटीज को उसके ड्रेसिंग के साथ कनेक्ट करने लग गए लोग। आपको क्या लगता है? आप एक टिप्पणी दीजिए इस मामले में जरा।
1: आई वोंट 100% अग्री टू दैट।
0: ओके,
1: कि अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने तो बस मैं मान ही लूंगी कि भाई ये तो ताबड़तोड़ इंसान है। नो, दैट्स नॉट द केस। आई थिंक टू डेज अगो आई टॉक्ड अबाउट दिस ऑन माय शो।
0: ओके,
1: कि इट्स नॉट नेसेसरी जस्ट बिकॉज अ पर्सन लुक्स वेरी पॉलिश्ड एंड वेल ड्रेस्ड एंड वेल ग्रूम्ड, तो वो उतना ही अच्छा इंसान भी हो
0: okay.
1: या वो उतना ही अमेजिंग काम कर लेता हो।
0: जी,
1: वो आप काम देखकर ही जज कर पाओगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: अपीयरेंस आर डिसीविंग।
0: एक चीज यहाँ पे कोर्ट में बोलना चाहूंगा, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस मामले में फिट नहीं होता, बट समवेयर अराउंड इसको हम यूज कर सकते हैं कि नॉलेज ब्रिंग्स पावर बट कैरेक्टर ब्रिंग्स रेस्पेक्ट।
1: टोटली
0: ठीक है। अब होता क्या है कि लोग एसोसिएट करते हैं उसके ड्रेसिंग को उसके कैरेक्टर के साथ, कि अगर वो वेल ड्रेस्ड है तो बहुत बढ़िया कैरेक्टर। जरूरी नहीं है, वेल ड्रेस्ड होना भी अच्छी बात है क्योंकि ही इज टेकिंग केयर ऑफ
1: योर शी।
0: ट्रू ट्रू ट्रू, बट अगर अंदर का जो माल है, स्टफ जो है आपका, वो अगर खराब है तो तो कितना भी भाई आप कपड़े बढ़िया पहनो, कितना भी अपने आप को ड्रेसअप करो,
1: आई विल फॉरगेट द क्लोथ्स बट आई वोंट फॉरगेट हाउ दैट पर्सन मेड मी फील.
0: एक एक मिनट में इन्होंने स्टूडियो का जो हीट लेवल बढ़ा दिया स्टेटमेंट के साथ. आग आग बरसने लग गई स्टूडियो में गाइस. यहाँ पे पानी की छींटे मारने का वक्त आ चुका है.
1: एसी बढ़ा देते हैं.
0: वो भी कर सकते हैं वैसे. वो मेरे दिमाग से निकल गया था, सॉरी. बट या बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि क्लोथ्स या फिर जो भी अपीयरेंसेस हैं दे आर टेम्पररी. वो एक पॉइंट के बाद मैटर नहीं करेगी. तुम कितना भी अच्छा अपने आप को ये कर सकते हो, अनटिल अनलेस अगर अंदर से अच्छी चीजें नहीं आती तो कोई फायदा नहीं है उसका. मगर दुख की बात ये भी है कि दुनिया प्रिटेंशियस भी हो रही है आजकल. एंड नाउडेज इट्स अ परसेप्शन इकोनॉमी. या हाउ यू यू नो हाउ यू आर एबल टू मेक अदर पीपल परसीव अबाउट योरसेल्फ, तो वो बहुत ही एक अलग स्किल हो चुका है. तो मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि अच्छे कपड़े पहनिए, प्रेजेंटेबल रहिए. इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं, इट इज इंपॉर्टेंट, बट वन थिंग दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इज बीइंग अ गुड पर्सन.
1: योर थॉट्स एंड योर वर्ड्स शुड बी रिचर देन योर क्लोथ्स.
0: भाई अब तो थंडर स्टॉर्म आ जाएगा स्टूडियो के अंदर यार.
1: यू डिड नॉट इवन लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस. उसके पहले तो शुरू हो गया.
0: इतने बढ़िया बढ़िया बात आप कर रहे हो, कैसे सह पाएगा इंसान आगे वाला.
1: सेंस बनी.
0: पकड़ के बैठा हूं मैं टेबल को. अच्छा ठीक है,
1: लेट्स प्ले द सॉन्ग नाउ. बहुत हो गया तेरा.
0: इतनी बढ़िया बात की है तो फिर एक बहुत ही प्यारा गाना जो है थोड़ी ही देर में आपके रेडियो सेट में हम प्ले करेंगे. मगर अभी फिलहाल एक गाना हम प्ले करना चाहेंगे आपके लिए. वो है प्लेयर्स मूवी का गाना जिसे मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने गाया. चौहान गलत बोल दिया मैंने. सॉरी. अब तनीषा के सामने मेरी हिंदी में भी प्रोनाउंसिएशन में गलती आने लग गई. ये गाना सुनेंगे थोड़ी देर में, मगर अभी फिलहाल के लिए मोहित चौहान की आवाज में. चौहान सही बोला ना मैंने?
1: चौहान, यस.
0: थैंक यू सो मच. थैंक यू टीचर. स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो 106.3 FM.
1: जी बिंदास मेरी जान.

0: मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: हेलो जादू।
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
5: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। These smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: ये गाने का सीन अगर आपको याद है, याद करना, गिटार लेकर आए थे सल्लू भाई, इलेक्ट्रिक गिटार में अकोस्टिक टून बजा रहे थे, कॉर्ड तो पकड़ा ही नहीं, बार पक्की हुए थे पूरे गिटार को वो, और कुछ भी बजा रहे थे। बट ये इट्स बॉलीवुड, तो यहां तो कुछ भी हो सकता है। बट यहां ऐसी ऐसी चीजों को रिविजिट करके जब हम देखते तो हमें अच्छा लगता है। एक टाइम था मुझे गाना बहुत पसंद था, इन द सेंस ये गाना तो मुझे अभी बहुत पसंद है, मगर इसका जो वीडियो था, जो सीन था, वो मुझे बहुत पसंद था। मैं ऐसे बार बार देखता था, और मैं भी एक वो डमी गिटार घर में बना के बेड के ऊपर खड़े होकर ऐसे डांस स्टेप करने की कोशिश करता था। मुझे उसी दिन समझना चाहिए था कि मैं भी सल्लू भाई की तरह ही हूँ डांस के मामले में, हम दोनों आइकॉनिक स्टेप्स करते रहते हैं, और तनिषा फैन है हम दोनों की, स्पेशली डांस की। मैं नाचता हूँ, तनिषा देखती रह जाती है। तनिषा भी है हमारे साथ, तनिषा प्लीज जुड़ी हमारे साथ। तनिषा मेरे डांस के बारे में क्या बोलोगे आप?
1: कितने पैसे मिलेंगे मुझे?
0: हैं?
1: How much money will I get?
0: डिपेंड करेगा, अच्छा बोलोगे बुरा बोलोगे?
1: क्या बोलना है
0: आप बताओ, आपको क्या लगता है? पैसों के हिसाब से आप भी डिसाइड करो।
1: अगर तू मुझे 500 रियाल देगा तो मैं कुछ अच्छा बोल पाऊंगी।
0: अच्छा चलो ठीक है, इसका माइक ऑफ कर देते गाइस, यही बात बोलते हुए हम भी जरा निकलते हैं। वैसे मुझे एक मैसेज आया है प्राची का, प्राची ने बोला है कशिश को वापस लेकर आओ।
1: प्राची, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, कशिश बस आने ही वाली है 10 बजे, आप सुन सकते हो।
0: नहीं, बेसिकली प्राची का बोलने का ये तात्पर्य है कि दो लोग जब बात करते तो अच्छा लगता है।
1: अच्छा, अच्छा।
0: और मजा आता है सुनने में, एक इंसान जब बात करता है तो वो फील नहीं आती। यू आर वेलकम प्राची, प्लीज फील फ्री टू कम। अल सफलिया स्ट्रीट, अल ईस्ट टावर, 14th फ्लोर, रेडियो ऑलिव,
1: मोस्ट वेलकम।
0: जी जी बिल्कुल, बट थैंक यू सो मच। हम भी ये बात करेंगे, हम बताएंगे कि सर दो लोग चाहिए मॉर्निंग में। वैसे मुझे भी काफी मजा आता है सुबह जब दो लोग होते हैं। जब मैं उनकी टांग खींचता हूँ, कोई मेरी टांग खींचता हूँ, वो बैंटर बहुत अच्छा रहता है। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं। कॉकटेल 2 हिट मूवी का गाना सुनते हैं। इतनी हिट क्या बताऊं मैं। अब एक्चुअली समझ जाना चाहिए बॉलीवुड को कि एक अच्छी मूवी का नाम लेके कोई अनरिलेटेड प्लॉट बनाने से कोई फायदा नहीं होता। नोबडी विल कम अंटिल अनलेस दिस स्क्रिप्ट इज गुड। इस मामले में तनिषा मैडम एक वर्ड में रिप्लाई कीजिए।
1: नहीं, एक सेंटेंस बोल दो प्लीज।
0: हाँ ठीक है बोलो।
1: सीक्वल इज नॉट बॉलीवुड्स फोर्टे।
0: ओह माय गॉड, चलो यही बात बोलते हैं हम भी निकलते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए कशिश, और आप खुली भाव से स्वागत कीजिएगा उसका, और कहते रहिए
1: जियो बंदा।

0: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस श्योर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
1: This hour is brought to you by
2: Homes R Us. We complete your home.

जितनी बार अगर आपसे बात करती हूँ उतनी बार ऐसा लगता है कि हमारी मुलाकात पहली बार हो रही है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कसुस शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड आज की शुरुआत एक अलग एनर्जी से जो है मैं कर रही हूँ, बिकॉज आज मैं अपने देसी एस्थेटिक्स में आई हूँ। हाँ जी, वो छनन छनन वाली चूड़ियाँ, झुमके और साथ में ना खुले खुले बाल, एकदम मेन कैरेक्टर वाइब में आज मैं आई हूँ। एंड कभी कभी ही ऐसा होता है, वरना मैं तो बस उठ कर ऑफिस आ जाऊँ यही बड़ी बात होती है। खैर, आज बहुत सारी अमेजिंग चीज़ों पर बात करेंगे। एक बहुत ही क्यूट फिल्म का रिकमेंडेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बॉलीवुड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ, फैशन में क्या कुछ नया हो रहा है सब बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा, एकदम चिपक के अपने रेडियो सेट से बैठना पड़ेगा। सो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग गानों के साथ साथ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग बातें जो है वो जारी रखेंगे मेरे अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग लिसनर्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड रहिए 106.3 रेडियो ऑलिव पर आपकी कशिश के साथ। फिलहाल एक अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग गाना नॉट सो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग फिल्म से, मतलब वेलकम टू द जंगल जो है ये आने वाली है मूवी, लेकिन मुझे इससे उतनी खास कुछ उम्मीद नहीं लग रही है। अब लेट्स सी, गाना तो बहुत अच्छा वाइब वाला है, आप बताइए आपको ये रिक्रिएशन कैसा लगा। 3311063 पर आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून रहिए, कहते रहिए।

ये जो लास्ट वाली हमिंग है ना, इसके लिए मैं ये गाना रिपीट पे बार बार सुन सकती हूँ. वेलकम जी 106.3 रेडियो आलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड अगर मौसम की बात करें तो ना ऐसे तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. एंड मैंने ना सुदेव को आज फुल ब्लैक आउटफिट में देखा है लिटरली, और ऊपर से उन्होंने ब्लेजर भी पहना हुआ था. मतलब उस इंसान को देख के, एक तो इतना हैंडसम इंसान, उस इंसान को देख के मुझे इतनी गर्मी लगी है कि भाई इतनी लेयर्स क्यों पहन रखी है. वैसे मैं वो इंसान हूँ जिसे अगर आप दो मिनट एसी में बिठा तो उसको जो है ठंड इतनी तेज लगने लग जाती है कि दिसंबर की जो ठंड है वो उसके सामने फेल है. लेकिन फिर भी मैं गर्मी पे बात करूंगी, बिकॉज कल की ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा थी कि मैं जैसे ही ऑफिस से बाहर निकली हूँ, मेरे चश्मे पे फॉग की जो है, फॉग बोलेंगे या पता नहीं क्या बोलेंगे उसको, उसकी एक लेयर जम गई थी, धुंधला हो गया था मेरा चश्मा. एंड फिर मुझे ऐसा लगने लग गया था कि यार अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइपर की जरूरत जो है वो मेरे चश्मों को भी पड़नी लग गई है. वैसे टेम्परेचर की बात कर रहे थे, इस वक्त का करंट टेम्परेचर जो है वो हो रहा है 37 डिग्री सेल्सियस. आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है एंड आज का लोएस्ट टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है. यानी टेम्परेचर तो कम रहेगा लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो एकदम अपने पीक पर होगी. सो देखिए अपना जो दिन है उस हिसाब से ही प्लान कीजिएगा एंड पानी जरूर पीते रहिएगा. ये मैं आपको याद दिला रही हूँ, साथ साथ मैं खुद को भी याद दिला रही हूँ कि कशिश पानी पीना है, कशिश पानी पीना है.

0: कुछ पानी पीना है. नए सिपर लेकर आई हूँ मैं. वैसे नए सिपर की स्टोरी आकर सुनाती हूँ. फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर का वक्त हो गया है.
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
1: कूल सॉन्ग
0: गाने का नाम है पीआरए और मेरा सिपर भी मुझसे यही कहता है पानी पीआरए पीआरए पीआरए. आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप.

देखिए मैं ना जो भी मेरे लिए चाय बना रहा होता है पहले उसको बोल देती हूँ कि मुझे चाय में चीनी नहीं चाहिए, शक्कर नहीं चाहिए, बिल्कुल मत डालना। लेकिन उसके बाद मैं हर थोड़ी देर में यही बोलती हूँ कि चीनी कम है, चीनी कम है, चीनी कम है, जबकि मुझे पता है कि मैंने ही कहा है कि मुझे चीनी जो है वो नहीं खानी है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड लाइफ कितनी मस्त है यार होती, मतलब और ज्यादा मस्त होती, लाइफ मस्त है लेकिन और ज्यादा मस्त होती अगर मतलब चीनी खाने से प्रोटीन मिल रहा होता या चीनी खाने से मिनरल्स मिल रहे होते, कितना अच्छा होता ना। मतलब कितनी स्वीट चीज़ है, कितनी प्यारी चीज़ है चीनी, हर चीज़ में चीनी डाल दो कितना बढ़िया लग जाता है। एंड हमारे यहाँ तो मतलब स्नैक्स में जो नमकीन चीज़ है उसमें भी थोड़ी सी चीनी डाल दी जाती है। मैं भोपाल से हूँ, भोपाल इंदौर में जो है जब पोहा बनाया जाता है तो उसमें थोड़ी सी हल्की सी चीनी डाल दी जाती है, ढोकले में हल्की सी चीनी डाल दी जाती है। तो बिना चीनी के हमारा कुछ होता नहीं है। एंड जैसे ही आप सोचो कि यार वज़न काफ़ी बढ़ रहा है जो है एक काम करते हैं शुगर कट कर देते हैं, तो शुगर कट करने के चक्कर में ये जितनी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें पसंद है वो सारी कट हो जाती है। अब एक चाय लवर को आप कैसे बोल सकते हो कि चाय में चीनी कम डाल के पियो, चाय का मज़ा ही नहीं है यार। मतलब चाय बनाते हुए जो है मैं चीनी कम डाल देती हूँ लेकिन उसके बाद फिर जब मुझे मज़ा नहीं आता चाय पीने में तो ऊपर से फिर चम्मच भर के चीनी डाल रही होती हूँ, ये तो और अनहेल्दी है। खैर इस पर भी बातचीत करेंगे, हेल्थ के बारे में भी हम बातें करते रहते हैं, ऑफकोर्स खुद हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं लेकिन फुल ऐसे फ्लेक्स करेंगे कि ओह देखिए हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं हम। जैसे अभी मैं पूरे ऑफिस के सामने फ्लेक्स कर रही हूँ कि मैं ना नया सिपर लेकर आई हूँ एंड मैं रोज 2 से 3 लीटर पानी तो ऐसे चुटकी, आई डोंट नो आपको चुटकी की आवाज़ आ रही है ये नहीं आ रही, लेकिन ऐसे चुटकियों में जो है इतना सारा पानी पी लूँगी। लेकिन पहले दिन ही पी पाई थी मैं, अभी वो जो बॉटल है वो जो सिपर है वो वैसे का वैसा ही भरा है, जितना मैंने उससे पानी नहीं पिया उससे ज़्यादा तो मैंने उसकी स्टोरियाँ डाल दी है। खैर कोई बात नहीं, वैसे दिल को हाइड्रेट करने वाली एक वीडियो मैंने देखी है आज जिसमें करण औजला किसके साथ डांस कर रहे हैं, गेस कीजिए, विराट कोहली के साथ। मैं कभी इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि करण औजला जो इतने अच्छे सिंगर हैं और विराट कोहली जो मेरे मतलब फेवरेट क्रिकेटर हैं, ये दोनों मुझे एक साथ स्टेज पे देखने को मिलेंगे। ओ माय गॉड, ये वीडियो वायरल हो रही है एंड सबको इतना मज़ा आ रहा है ना, जब आपका फेवरेट सिंगर और आपका फेवरेट क्रिकेटर साथ में एक जगह देखने को मिल जाए, इससे ज़्यादा बढ़िया दिल को खुशी देने वाली और कोई चीज़ नहीं हो सकती। वैसे हो सकती है अगर मुझे इश्क सूफियाना जो है गाना कोई सुना दे, और देखिए कौन सुनाएगा, आपकी कशिश सुनाएगी ना। सो अमेजिंग वाला गाना इश्क सूफियाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे इंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास। आकर मैं बताऊंगी कि स्ट्रेस को किस तरीके से कम किया जा सकता है रोज की तरह। स्टे ट्यून रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: कहां आप लोग भी मुझसे ये पूछते रहते हो कि यार कुछ स्ट्रेस कम कैसे किया जाए, इतने अच्छे गाने सुनाती हूँ मैं आपको, बस इन्हें सुनो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड देखो हर रोज मैं आती हूँ और स्ट्रेस से बचने का आपको एक फनी तरीका जो है वो बता के चली जाती हूँ। एंड मुझे ना बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि ये सारे तरीके आप जो है इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो, इसीलिए कल जो है थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे हो गया था तो मैंने अपने तरीके खुद आजमा के देखे एंड ब्रो सच में देखो रिलैक्स तो फील होता है। अब कल मैंने क्या किया ये मैं आपको बताती हूँ। सो आपको याद है जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे और किसी जगह पर जाते थे एंड कुछ चीज़ खरीदने की मम्मी पापा से जिद किया करते थे एंड मम्मी पापा मना कर देते थे तो कैसे हम ज़मीन पे लेट कर जो है हाथ पैर पटक के रोया करते थे और बस हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाया करता था। बस यही सेम चीज़ आपको करनी है लेकिन मार्केट में नहीं अपने बेड पर। सो जब भी आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो या किसी चीज़ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो सो बस आपको अपने बेड पर जाना है और किसी बच्चे की तरह हाथ पैर जो है वो मारने लगना है एंड थोड़ा सा यू नो ऐसे क्राई वाली एक्टिंग करनी है आपको, क्राई बेबी वाली एक्टिंग करनी है। उसके बाद क्या होगा ना कि आपका फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा एंड ये जो हरकत कर रहे हो ये करते हुए आप खुद को बहुत फनी लगोगे तो आपको हंसी आ जाएगी। बस इससे आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। एंड अगर आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ तो नहीं, ये तरीका जो है ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसको कहते हैं कि आप अपने इनर चाइल्ड को जो है बाहर आने देते हो। सो बस अपने इनर चाइल्ड को बाहर आने दो और ऐसे फ्रेश फ्रेश आइडियाज मैं भी आपके लिए लाती रहूंगी। फिलहाल ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है इसे सुन लो।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना
0: रूबरू, ये रूबरू एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: बिंदास। टाइम चेक। Brought to you by नानाताल पहाड़, the ultimate कतरी एडवेंचर। सुकवाकिफ अलखोर।
2: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 11:10 यानी 11:10।
3: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
3: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
5: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक, 106.3 एफएम रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. नो रियली आई मीन इट. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है.

0: जब किसी भी फेवरेट चीज में थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है ना तो खुशी और एक्स्ट्रा हो जाती है. बस यही होता है जब आप लोगों का थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार मुझे मिलने लग जाता है. वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिवर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड इस वक्त मैं ना बैठकर आप लोगों के मैसेजेस पढ़ रही थी. सो हर्ष जी का ये कहना है कि रेडियो ऑलिव सुनकर उनका मूड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता है, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है क्योंकि इतनी वैरायटी के गाने हैं और इतना फन कॉन्वर्जेशन जो है वो हम कर रहे होते हैं. तो थैंक यू सो मच हर्ष, ऐसे ही सुनते रहिए, आपकी लाइफ को जो है हम और ज़्यादा फन बनाते रहेंगे. एंड मैंने इन्हें रिप्लाई कर दिया तो इनका ये कहना था कि ओह वाओ, मैंने रिप्लाई एक्सपेक्ट भी नहीं किया था. देखिए, बिना एक्सपेक्टेशन के आप कुछ करो और आपको वहाँ से जो है रिप्लाई मिल जाए या बदले में कुछ मिल जाए तो फीलिंग थोड़ी और अच्छी आती है. खैर, यूसुफ खान जी ने जो है वो भी बहुत ही बढ़िया वाली बात कही है. और मैंने जब थोड़ी देर पहले ह्यूमिडिटी की बात करी थी तो उन्होंने कह दिया कि कशिश ये ह्यूमिडिटी तो कुछ भी नहीं है, ह्यूमिडिटी तो अभी आप अगस्त में देखिएगा. या आप मुझे डरा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? खैर, बहुत अमेजिंग अमेजिंग बातचीत जो है हम करने वाले हैं. मैंने सोचा है आप लोगों का ओपिनियन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए थोड़ी सी देर में मैं आपसे आपका ओपिनियन पूछने वाली हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे. सो 3311063 ये नंबर सेव कर लीजिए, इस पर आपको अपना मैसेज जो है वो मुझे भेजना है. 3311063. कोई और मैसेज भेजना चाहे तो वो भी भेज सकते हैं, मैं इंतजार करूंगी. फिलहाल अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, इंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास.
1: Radio Olive Byrne. Aane wala gaana. Cool song of the hour.

Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

यू नो, पहले कहा जाता था घर की मुर्गी दाल बराबर, लेकिन अब घर की रोटी जो है वो बाहर की बिरयानी बराबर हो गई है, क्योंकि लोग जो है अब घर पे रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड एक न्यूज मैं पढ़ रही थी इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर एक मुंबई में काम करने वाले एक आईटी गाय को जो है बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा था, बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी, लेकिन उसने जॉब छोड़कर अपने होम टाउन एक छोटे शहर जाना प्रेफर किया, क्योंकि उसे लगता है कि यार मैं जो है भले ही कम पैसे कमाऊंगा अपने शहर में, लेकिन ज़्यादा इफ़िशेंटली उसे खर्च कर पाऊंगा। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ है कि बाहर जाकर जो है बड़े शहर में अगर आप जाकर कमाते हो सो आपका खर्चा ज़्यादा होता है, सेविंग्स नहीं हो पाती है? बताइए, बहुत सारे लोग जो है घर से बाहर रह रहे हैं, क्या आप सेविंग कर पाते हैं? क्योंकि मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि आप किसी और शहर में, किसी बड़े शहर में जाते हो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, लेकिन पैसे कोई सेव नहीं हो पाते। आप बताओ, क्या आप सेविंग कर पा रहे हो या आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो? 3311063 पर आकर आपको मैसेज करना है, और बस मुझे ये बताना है कि क्या घर की सूखी रोटी अब बिरयानी बराबर हो गई है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी एक छोटे से अमेजिंग से गाने के उस पर। 3311063 इज माई नंबर, जल्दी जल्दी मैसेज कर दो।

बहुत सारी मतलब बहुत बहुत बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने ये कहा कि यार देखो कशिश सेविंग तो नहीं हो पा रही है लेकिन होम टाउन में उतना एक्सपोजर भी तो नहीं है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया था कि एक मुंबई का टेकी है जिसने अपना जॉब जो है वो क्विट कर दिया, एक बहुत हाई पेइंग जॉब क्विट कर दिया सिर्फ अपने होम टाउन जाने के लिए क्योंकि वहाँ पे सुकून ज़्यादा मिलता है। एंड अब जो कहावत थी घर की रोटी दाल बराबर, अब वो पलट के ऐसी हो गई है कि अब घर की रोटी जो है बिरयानी बराबर हो गई है। सो क्या आप इससे रब्ता रखते हैं, बस मैंने यही पूछा। एंड लोग मुझसे यही कह रहे हैं कि यार कशिश देखो जो भी कहो बाहर रहो तो एक्सपोजर बहुत मिलता है एंड सेविंग करना ना करना आपके हाथ में होता है। सो आप अगर सेविंग का इंटेंशन रखेंगे, कोशिश करेंगे तो सेविंग हो जाएगी। एंड होम टाउन में कहीं ना कहीं खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है बिकॉज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो ज्यादा बढ़ जाती हैं, ज्यादा लोगों के घर जाना पड़ जाता है एंड ज्यादा चीजें आप जो है सोचते हो कि घर पे है तो ज्यादा चीजें जो है परचेज कर लेते हैं, वरना आप बाहर रहते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार इसकी जरूरत नहीं है, हम अकेले चला सकते हैं। सो आपको क्या लगता है 3311063 पर आकर मुझे मैसेज कर दीजिए। थोड़ी सी देर में एक ऐसे ही जैसी हम बात कर रहे हैं कि ऐसी ही रिलेटेड फिल्म जो है वो मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ। सो जल्दी से आ जाओ, फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आपका इंतजार कर रहे हैं ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव। जियो बिंदास।

यार देखो, कुछ मूवीज हम देखते हैं एक हीरो को स्क्रीन पे, लेकिन कुछ मूवीज के हीरो हम खुद बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि यार ये तो हमारी स्टोरी ही चल रही है। और एक ऐसी ही मूवी आज मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश। एंड थोड़ी देर पहले मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक रिलेटेबल मूवी जो है वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, आपको रिकमेंड करने वाली हूँ। सो मूवी का नाम है शर्मा जी की बेटी। हाँ जी, ये वो शर्मा जी की बेटी नहीं है जिससे आपको हर थोड़े दिन में कंपेयर किया जाता है कि यार देखो वो जो है टॉप कर रही है, देखो वो जो है कितने अच्छे से तैयार होती है, देखो वो कितने हंस के बात करती है लोगों से। नहीं, ये बिल्कुल आपकी स्टोरी है। एंड जब आप इस मूवी को देखोगे ना, तो धीरे धीरे मूवी कुछ ऐसे टॉपिक्स को अनफोल्ड करेगी जो आपको लगेंगे कि यार इस पे तो हमने सोचा ही नहीं। एक बहुत कंफर्टिंग मूवी है, एक डेली फैमिली ड्रामा टाइप की मूवी है। सो आप देख सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बाकी IMDB की अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो इसे 10 में से 7.5 रेटिंग दी गई है, एंड मैं इसे पर्सनली 5 में से 3.5 देना चाहूंगी। सो आप मुझे देख के बताइएगा कि शर्मा जी की बेटी मूवी जो है आपको कैसी लगी। 3311063 इज द नंबर, इस पर अगर मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास भी कोई ऐसी मूवी है जो आपको लगता है कि यार कशिश ये मूवी सबको रिकमेंड करो, कितनी बढ़िया मूवी है, सो बस वो भी मैं बताऊंगी, आप मुझे आके बता सकते हैं सेम नंबर पर 3311063। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: भाई समर में कूल बनने के लिए मैंने सोचा था कि मैं कैप लगा लेती हूँ, कितनी बढ़िया लगूंगी, एकदम स्ले करूंगी, लेकिन बिल्कुल अपने पीटी वाले सर के जैसी दिख रही थी मैं। वेलकम जी, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ। एंड यहाँ पर हम बात करते हैं फैशन ट्रेंड्स की कि क्या कुछ इस वक्त फैशन की दुनिया में चल रहा है। सो अगर आप अभी भी वो बोरिंग समर कैप्स जो है लगा रहे हैं जिससे आपके बाल खराब हो जाते हैं एंड आपका फेस नहीं दिखता है, फोटोज अच्छी नहीं आती, एंड स्टाइल भी जो है आप उसे नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए मेरे दोस्त आपको जो है एक बकेट हैट की जरूरत है। नहीं, बकेट को हैट बना के नहीं पहनना है। बकेट हैट जो है वो एक अलग सी हैट होती है जो किसी टोकरी की तरह लगती है ना, आपके सर पे बढ़िया तरीके से फिट हो जाती है, धूप उससे थोड़ी कम बचती है, लेकिन आप फैशन के ट्रोल से पूरी तरीके से बच सकते हैं। यानी फैशन जो है वो गेम आपका एकदम अप हो जाएगा, एकदम हाई हो जाएगा। बकेट हैट्स की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रही है एंड अलग अलग प्रिंट्स एंड वाइब्रेंट कलर्स में इस वक्त मार्केट में देखने को मिल रही है। मैं खुद 3 लेकर आई हूं, लेकिन अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हो पाई है कि मैं उसे किसी आउटफिट के साथ पेयर करूं, लेकिन आज ये बात आपको बता दी है तो जल्द ही जरूर से जरूर ये वाली चीज मैं पेयर करने वाली हूँ। इंस्टाग्राम पे आकर आप मेरा ये आउटफिट OOTG देख सकते हैं। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन्हें एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है कूल सॉन्ग।

फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।

भाई देखो, फीफा देखने के बाद थोड़ा थोड़ा फुटबॉल में मुझे इंटरेस्ट तो आ रहा है, लेकिन ये जो है मुझे फुटबॉल पगलू नहीं बना पाएगा, मैं तो सर्टिफाइड क्रिकेट पगलू ही रहने वाली हूँ। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड लाइफ ना डबल ट्रिपल मस्त हो जाती है जब मैं किसी नई क्रिकेट सीरीज का जो है वो नाम देख लेती हूँ। सो वैभव सूर्यवंशी ने जो अमेजिंग हमें जीत दिलवाई है अभी जो सीरीज हुई थी उसमें, उसके बाद एक और जो सीरीज है उसके लिए इंडिया बिल्कुल तैयार है, जो T20 सीरीज होने वाली है एंड इसमें हम खेलने वाले हैं आयरलैंड के खिलाफ। स्क्वाड में अक्षर पटेल, संजू सैमसन ये सब होने वाले हैं। सो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि कैसा मैच होगा। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट पर, इन्हें एंजॉय कीजिए और बाकी थोड़ी सी देर में जो है टाटा बाय बाय बोलने का वक्त हो जाएगा। अमेजिंग गाने एंजॉय कीजिए, कहते रहिए जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

अच्छा तो मैं चलती हूँ, कल वापस मिलूंगी। देखिए इस आवाज में मुझसे तो बात नहीं हो पाएगी, मेरे अंदर का जो कमलेश है वो बाहर आ जाता है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आप मेरे साथ लाइफ मस्त है, एंजॉय कर रहे थे। अब हो गया है वक्त मेरे यहाँ से जाने का, लेकिन जाते जाते मैं वही कहूँगी आपसे जो हर रोज कहती हूँ कि गाड़ी ना थोड़ा धीरे धीरे हौले हौले चलाना, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, हाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, सनस्क्रीन लगाते रहना एंड मुझे जो है याद रखना। और अगर मेरी याद आपको सताए तो 3311063 पर आप कभी भी मैसेज कर सकते हो। ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जो है आप जा सकते हो, radio.olive.qa। मेरी जबान कितनी लड़खड़ा रही है यार, आपसे बिछड़ने का दुख तो नहीं है कहीं? सो radio.olive.qa जो है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर जाकर आप मुझे सर्च कर सकते हो, मैं आपको वहां पर मिल जाऊंगी, फॉलो कर लीजिए। अमेजिंग वाली बातचीत जो है जारी रखेंगे, फिलहाल अमेजिंग गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन्हें एंजॉय कीजिए, उसके बाद मुलाकात होगी अब कल। तो जियो बिंदास। Radio

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: This is
5: Vani Bhanushali.
6: Hey, this is Ileana
7: De Cruz.
8: This is me, Ritik Roshan.
9: Hi, I'm Alia Bhatt.
10: Hi, I'm Vivekanand Oberoi, and you're listening to Radio Olive. Jio Bindas.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहां हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम इट्स एन इमोशन. फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद.
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर.
3: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. Culture travels, football connects, and Hiwari is bringing Qatar to the world.
4: Olive Music Marathon. 1 ghanta, 1 ghanta, non-stop back to back gaane.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रिंग फॉर द न्यूली मैरिड क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
2: अरे यार हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Olive Music Marathon. Ek ghanta non-stop back to back gaane.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: Mornings and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: This beautiful track is also on the way. Rockstar se Harshdeep Kaur ki awaaz mein katya karu and then this beautiful one KK ki awaaz mein.
1: Aankhon mein teri ajab si adaaye hain.
0: भाई बहुत ही खूबसूरत गाने लाइंड अप है इस घंटे में और ढेर सारी बातें भी करनी है लेकिन शुरुआत तो आपसे ही होगी तो आ जाओ फटाफट से मैसेज करो 3311063 पर और सुनते रहो रेडियो ऑल एफ जियो बिंदास मेरी जान।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

बर्फी मूवी से रेखा भारद्वाज के आवाज में फिर ले आया दिल, बहुत सुंदर गाना, मतलब अलग लेवल का सुकून है इसमें और पेन भी है, दोनों चीजें है ना। तनिषा के साथ यहाँ रेडियो 106.3 FM पर ऑल रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर, और वैसा ही पेन और सुकून हमारी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमें पता होता है कि यू नो हम एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं, अभी ग्रोथ थोड़ी सी मुश्किल हो गई है, सैचुरेटेड हो गई है, सो इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, पर उसको प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, उससे नेगोशिएट करते रहते हैं कि आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, अरे जब बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा ना तब, बट यू नो वॉट यू नीड टू डू राइट नाउ, इट्स जस्ट वो कम्फर्ट से बाहर निकलने का जो डर है वो आपको रोक रहे हैं। एंड अगर ये सिचुएशन में आप फंसे हैं तो थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी मेरी जान, इस कंफर्ट को छोड़कर जब आगे बढ़ोगे इवेंचुअली यू विल गेट कंफर्टेबल इन दैट ऑल्सो, एंड दैट इज लाइफ। जहां आपको महसूस हुआ कि भाई अब तो एक्सट्रीम कंफर्ट लेवल पे मैं आ चुकी हूँ, एंड कंफर्ट के साथ में सैचुरेशन भी आता है, और जब वो पॉइंट आ जाता है ना देन ग्रोथ रुक जाती है, वो हैम्पर हो जाती है। सो उससे आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूसली मूव करते रहना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, सो डू दैट इफ इट इज़ रिक्वायर्ड इन योर लाइफ राइट नाउ, उसे प्रोक्रास्टिनेट मत करो, दिस इज योर साइन, समझ रहे हो बात को? जी हाँ, sending cool song of the hour, stay tuned and Jio Bindas. Cool song. Radio.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
0: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
3: Olive Recharge.
4: This hour is brought to you by.
5: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
6: इन एसोसिएशन विद
7: दोहा बैंक,
5: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th. TNC apply.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Tanisha Ab ke saath. I am in love. Dominic Sirajo ki awaaz mein suna. Neela Nikki se beautiful track. Aur jo Hamba Indian Mango Exhibition 2026 shuru hua hai, isme Souq Waqif mein. Abhi 5-6 din hue hain and so far they have sold 84 tons of mango and 74,000 visitors have visited. Sirf 5 dinon mein. And hamare office se bhi kuch log gaye and we have posted a video by the way on our socials. आप check out कर सकते हैं कि आपको क्या क्या amazing varieties वहाँ पे मिलने वाली है mango delicacies की. And I love mango. I am very eager to go and you know witness that और वो सारी yummy चीजें taste करेंगे. सबसे ज़्यादा वो spicy वाला जो mango जिसके ऊपर बहुत सारा chili और some kind of sauce they put, it is so delicious. Oh my god. बात करते हुए मुँह में पानी आ गया. बताओ. So if you haven't so far, प्लीज़ जाइए, चेकआउट कीजिए और लुत्फ उठाइए यार, और मैंगो लेकर आइए. सीजन में बनता है. हाँ जी. सेंडिंग कतिया करूँ हर्षदीप कौर की आवाज़ में. स्टे ट्यून्ड. एंड्रियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस ह्योर इन GCC। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। Culture travels, football connects, and Hiwari is bringing Qatar to the world.
3: Only laga aur ho ja recharge.
4: Olive recharge.
5: Olive recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio bindaas.
4: Olive recharge.
6: This hour is brought to you by.
7: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
8: इन एसोसिएशन विद
9: दोहा बैंक
7: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

0: Tanisha.
1: के आवाज में अजब सीन फ्रॉम द मूवी ओम शांति ओम, बहुत सुंदर गाना है। और जो दीपिका पादुकोण की एंट्री होती है इस गाने में, जो पॉइस और ग्रेस के साथ उन्होंने खुद को हैंडल किया है, ब्यूटिफुल, बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग आई वुड से। और शाहरुख खान तो शाहरुख खान है यार, उनके लिए क्या ही बोलूं। तनिषा के साथ आप रेडियो ऑल एफएम 106.3 एफएम पर ऑल ऑफ रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर। एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ दोहा फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस किए हैं एग्जीक्यूटिव मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम्स। जी, सो ये जो प्रोग्राम है, इट इज़ डिज़ाइन फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड लीडर्स जो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं। एंड इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग एक्सपर्टीज इन हेल्थ केयर लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, हेल्थ केयर ऑपरेशंस, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, मैनेजिंग हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस। सो हेल्थ केयर सेक्टर में ऑल दीज थिंग्स आर देयर जिन पे आप फोकस कर रहे हैं, तो यू शुड गो फॉर दिस कोर्स। चेकआउट कीजिए UDST की वेबसाइट पर जाकर, एंड इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई, गो एंड एनरोल मेरी जान। और गुड लक एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल एफएम। जियो बिंदास
2: रेडियो।

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Olive Recharge Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas
4: Olive Recharge.
5: This hour is brought to you by
6: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
7: दोहा बैंक
6: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: तनिषा
1: लाइफ इन मेट्रो मूवी से इन दिनों ब्यूटीफुल ट्रैक दिल कह रहा है तो कर लो. इट इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग यार मोहब्बत एंड वो एक्सपीरियंस करना तो बनता है. और तनिषा के साथ यहाँ पर रेडियो ऑल एफ 106.3 FM पर ऑल एवरी चार्ट चल रहा है.

क्या सुंदर गाना है यार, मतलब so beautifully sung मोहम्मद रफी साहब की आवाज में and so beautifully written. अब इसके लिखे जाने के पीछे एक बहुत ही कमाल और इंटरेस्टिंग स्टोरी है. सो हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है ये गाना, इसके लिरिसिस्ट वो हैं. एंड यू नो इस गाने का आइडिया उन्हें कहाँ से आया था? He saw a woman at a party and he just fell in love with her. You know, love at first sight wala thing. That happened. Aur, par unme himmat nahi thi ki wo apna jo pyar hai uska izhar kar paye unse jaakar. Dono ne ghar aakar ye gaana likha. How beautiful. And the way he has described his emotions and his feelings in this song. Oh my God, crazy. That is, इसीलिए कहते हैं कि उस टाइम के जो गाने थे ना उनकी तो बात ही अलग थी. तो आइए एंजॉय करते हैं रफी साहब की आवाज में एहसान तेरा होगा मुझ पर. Stay tuned, Andrew Bindas.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
1: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज।
2: ऑलिव रिचार्ज। रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: ऑलिव रिचार्ज।
3: This hour is brought to you by.
4: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के। इन एसोसिएशन विद
5: दोहा बैंक,
4: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग। गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड। जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स। अप्लाई बिफोर जून 30th। TNC apply.

0: Tanisha.
1: Tanisha, आपके साथ ऑल रीच आउट चल रहा है यहाँ पर. और भाई दोहा बैंक और लुलू आपके लिए जो कमाल ऑफर लेकर आया है ना, इट विल मेक योर शॉपिंग मोर rewarding and amazing. जी, all you have to do is just apply for Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card or you can get up to 500 रियाल का Lulu Shopping Voucher. And not just that, जब भी आप Lulu Store पर spend करेंगे आपको 5% savings मिलेंगी Lulu Points के form में, तो वो आप बाद में redeem कर सकते हैं. Also you can enjoy airport lounge access, my book offers, dining deals or lifestyle privileges. बस card activate करना है Lulu पर, एक रियाल मिनिमम आपने स्पेंड करना है और रिवॉर्ड्स का मजा ले सकते हैं. दैट्स ऑल. दिस ऑफर इज वैलिड टिल 30th जून ओनली. सो फटाफट से जाइए और अप्लाई कीजिए फॉर दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड एंड अपनी शॉपिंग को और भी मजेदार बनाइए. और सुन रही है रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ हर दोपहर 2 से 5 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: तनिषा
1: तनिषा जवानी सॉन्ग सुना आपने स्टूडेंट ऑफ द ईयर टू से तनिषा के साथ हैं आप रेडियो 106.3 एफएम पर ऑल एवरी चार्ट चल रहे हैं और वक्त हो चुका है Lame jams का आज का मेरा सवाल है कि अगर आपका पार्टनर बीमार हो जाए तो उसे क्या कहेंगे अगर आपका पार्टनर बीमार हो जाए तो उसे क्या कहेंगे इंग्लिश का वर्ड है और हिंट नहीं दूंगी इससे ज्यादा मैं आगे देखते हैं मतलब एक मौका तो दू थोड़ा सोचो अगर आपका पार्टनर बीमार हो जाए तो उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे जल्दी से बताइए 3311063 पर मैसेज करके या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर एंड स्टेट यू टू रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहाँ हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद.
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स.
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर.
3: हाय गाइस, दिस इज जुरिता गांधी. You are listening to me on Radio Olive,
4: Geo Binda. Radio Olive, I'm a number one.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: ऑलिव रिचार्ज आरजे तनीशा के साथ रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के इन एसोसिएशन विद
3: दोहा बैंक
2: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स अप्लाई बिफोर जून 30th TNC apply.

0: Tanisha.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM, Tanisha aapke saath. Olive Recharge chal raha hai yahan par aur lame gems ka sawal pucha tha maine aaj aapse.
2: Lame gems.
1: Ki agar aapka partner bimar ho jaye to use kya kahenge? थोड़ी सी ऐसे मुश्किल हो रही है, देख पा रही हूँ मैं यहाँ मैसेजेस में. तो चलो एक हिंट दे देती हूँ. जो अंग्रेजी का एक वर्ड है इसका जवाब, उसमें सिक आता है. अब इससे ज्यादा दिया तो मैं जवाब ही दे दूंगी, है ना. एक मौका और दे रही हूँ, बताएं जरा, सोचें अगर आपका पार्टनर बीमार हो जाए तो उसे क्या कहेंगे. 3311063 पर मैसेज कीजिए और बताइए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास मेरी जान.
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.
5: कूल सॉन्ग.

0: Kolkata's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Olive Recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas. Olive Recharge.
2: This hour is brought to you by.
3: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के. इन एसोसिएशन विद
4: दोहा बैंक,
3: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग. गेट अ 500 कतरी रियाल लुलु वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड. जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स. अप्लाई बिफोर जून 30th. TNC apply.

0: तनिषा
1: तनिषा। कोई कहे कहता रहे कितना भी हमको दीवाना, हमें कोई लेना देना नहीं है। लोगों का काम यही है, उनके पास मुंह है वो उसका इस्तेमाल करते हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं। हमारे पास दो कान है, हमें उसका इस्तेमाल करना है, एक से सुनना है दूसरे से निकाल देना है। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, यस यही वंडा लेके चलना चाहिए लाइफ में, सुखी रहोगे। तनिषा के साथ आप रेडियो 106.3 FM पर ऑलिव रिचार्ज चल रहा है। यहाँ पर लेम जैम्स का आज का मेरा सवाल था कि अगर आपका पार्टनर बीमार हो जाए तो उसे क्या कहेंगे। एंड आई टोल्ड यू कि यू नो जो एक वर्ड आंसर है इसका इंग्लिश में, उसमें सिक भी आता है। तो बहुत कम यहाँ पे मुझे जवाब आ पाए हैं, पर इट्स ओके, इट वॉज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड। एंड द आंसर इज बेसिक, बी ए ई, बे वाला और सिक, यस। गुस्सा आ रहा होगा, आई नो, इसीलिए मैंने पहले ही एक बढ़िया गाना आपके लिए सेट करके रखा है। तो आइए वो एंजॉय करते हैं और सुनते रहिए रेडियो ऑल जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स, मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
1: लगा और हो जा रिचार्ज.
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास.
2: This hour is brought to you by.
3: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के. इन एसोसिएशन विद
4: दोहा बैंक,
3: मेक शॉपिंग मोर रिवॉर्डिंग. गेट अ 500 कतरी रियाल लुलू वाउचर विद योर न्यू दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड. जस्ट स्पेंड 1 कतरी रियाल टू अनलॉक अप टू 5% रिवॉर्ड्स. अप्लाई बिफोर जून 30th. TNC apply.

0: Tanisha.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, aapke saath. Olive Rejoice chal raha hai. Aap aur waqt ho gaya hai meri jaane ka, meri jaan. Milenge kal dopahar 2 baje. Apna dher sara khayal rakhiyega. Aur stay hydrated. Crazy wali garmi ho rakhi hai. To, you know, paani wani peete rahiye. Electrolytes wagera apne saath rakhiye. Aise fruits khaye jisme bahut zyada water contain ho. Khana light khaye. Zyada oily na ho. Aur zyada heavy na ho. Theek hai? Aur jab bhi bahar nikle, bhar bhar ke sunscreen laga de. Kyunki क्रेजी हो रखा है आपको, पता है आप समझदार हो, मैं बस रिमाइंड करवा रही हूँ आपको, क्योंकि लाइफ में इतनी चीज़ें चल रही होती हैं यार, हम ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, तो मैं बैठी हूँ उसके लिए, मेरी जान परवाह है ना आपकी. वेल ऑन दैट नोट चलते हैं, मिलेंगे कल. आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हमें फॉलो कर लें सोशल मीडिया पे, और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है, और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स, एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

0: गाने सुनते हो कभी कभी आप लिरिक्स फील करते हो, दिलेर पाजी अस ब्रो अस, मैं आज आपके लिरिक्स जो थे ना वो फील कर रही थी।
1: ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा।
0: होता है दोस्त, सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है फिर ऐसा भी आता है। दीवाना बनाने के लिए आ गई है ब्रो, 4 घंटे अपने ही है, ठीक है। और बताओ कैसा रहा आपका आज का दिन, जबरदस्त इवनिंग जो है वो शुरू हो चुका है। 5:06 स्टूडियो की घड़ी पे अपना आज के दिन के बारे में बताने के लिए और ऑफ कोर्स गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भेजने के लिए नंबर आपको पता ही है 3311063। आपके मैसेजेस का इंतजार कर रही हूँ। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहिए जियो बिंदास, खुश हो यार, आपकी हैप्पीनेस की फ्रीक्वेंसी को आप सुन रहे हो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहाँ हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन. FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव.
1: In association with
0: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
2: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
0: Your trusted remittance partner.
3: Namaskar, main hu R Madhavan.
4: Hi, this is Bibasha Basu.
5: Hi, I'm Rajkumar Rao.
6: Hi, main hu Priyanka Chopra.
7: Hi, this is Disha Pardi.
3: Aap sun rahe hain Radio Olive 106.3 FM.

0: ते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: जा, सुनते रहो रेडियो ऑलिव और कहते रहो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
3: मेरा बाबा

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
1: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
2: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ। Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

0: ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जी इवनिंग अच्छे वाली चल रही है कि देखो एक नंबर गाने आप लोगों के लिए चल रहे हैं और एक नंबर मैच भी है आज बिल्कुल फीफा वर्ल्ड कप के बारे में बात करें आज के मैचेस जो हैं वो पुर्तगाल और उज्बेकिस्तान के बीच में रात ये 8 बजे होने वाला है कदा टाइम एंड इंग्लैंड एंड घाना के बीच में रात के 11 बजे जो है वो मैच होने वाला है सो आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो और कैसा लग रहा है ये फीफा वर्ल्ड कप जो है वो चल रहा है यार मैं बड़ा मिस कर रही हूँ यार मतलब अपने कतर में जब हुआ था माहौल ही अलग था मतलब सबको देखने का मौका मिला था सब लोगों ने टिकट्स जो थी वो बुक कर ली थी इससे पहले ना टू बी वेरी ऑनेस्ट जब तक अपने कतर में फीफा वर्ल्ड कप नहीं हुआ था मुझे कभी भी इतना इंटरेस्ट आया नहीं था लेकिन जो मैंने पागलपन फुटबॉल के लिए कतर में देखा है ओ माय गॉड और फीफा के टाइम पे देखा है ऑनेस्टली मेरा अभी मैं अगर वापस जा सकती ना वो 2022 में फीफा के टाइम पे तो मैं सारे मैच की टिकट्स बुक करती यार बट दैट्स ओके सिमरन कौर याव के साथ जियो बिंदास
1: ये खेल है Blockbuster.
2: In association with...
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
3: Your trusted remittance partner.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न.
3: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन. फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस. प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस. और सुनो, देयर इज मोर. With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विथ.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

दर्द सहोगे यार। मैं पढ़ रही थी एक न्यूज जिसमें क्या हुआ कि लोग रिलेशनशिप में जब भी आते हैं है ना, प्यार बहुत सारा होता है तो ऐसे टाइम पे वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। सो एक एक लड़की थी, ठीक है, और उसने देखा कि भाई 6 महीने की उनकी रिलेशनशिप थी और 6 महीने की रिलेशनशिप में उसने ना अपनी किडनी डोनेट कर दी अपने जो उनका बॉयफ्रेंड था उसकी लाइफ को सेव करने के लिए। और 7 महीने बाद क्या हुआ कि वो वेगस गया, ठीक है, उसी अपनी बैचलर पार्टी के लिए, और वहां पर उसने अपनी बंदी को चीट किया। और बाद में जब बंदी को पता लगा तो उसने गुस्सा किया लेकिन उसने उसको माफ कर दिया। अलग लेवल का सीन जो है वो लाइफ में चल रहा है। 5:49 स्टूडियो की घड़ी पे, अगर उसकी जगह आप होते क्या आप माफ करते या नहीं करते बताइएगा मुझे 3311063 पे। फील फ्री टू मैसेज मी। 3, 2, 1 एंड गो।

0: आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं, तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कारामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कारामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
3: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3।

0: सिमरन कौन है तोड़े नाल यार ये क्या हो रहा है
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: सब एआई का पता ही है हम सबको कि एआई जो है वो क्या क्या काम खराब कर रही है आजकल ना मैं बहुत सारे एआई वीडियोस जो है वो देख रही हूँ फनी इंफॉर्मेशन या स्टोरी वाले इतने सारे एआई है कि मतलब ऐसे लग रहा है पूरी की पूरी फिल्म जो है ना वो चल रही है सोशल मीडिया पे क्या होता है कि पहले ओरिजिनल बंदा ऐसा ह्यूमन जो है वो यू नो कंटेंट बना रहा था दिमाग लगा रहा था सब कुछ चल रहा था लेकिन अब क्या है कि आपको किसी इंसान की ज़रूरत ही नहीं है एक इंसान बैठा दिमाग वाला वही कंटेंट क्रिएट कर रहा है एडिट कर रहा है और पोस्ट कर रहा है किसी भी इंसान की ज़रूरत ही नहीं इतने सारे और क्या हो रहा है कि इसमें पूरा स्टोरी जो है वो चल रहा है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री भाई सच्ची बोलो तो इंटरेस्ट आ भी जाता है कि ओके सेकेंड स्टोरी में क्या हुआ थर्ड स्टोरी में जो है वो क्या हुआ कल एक स्टोरी देख रही थी उसमें क्या है कि फ्राइड राइस बोल रहा होता है मंचूरियन को कि बेबी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता तो बोलती है कि हाँ मैं तुम्हारी ही हूँ ठीक है उसके बाद जो है ये मंचूरियन है वो चाउमीन के पास चला जाता है और उसके बाद बेचारा फ्राइड राइस है वो रोता रह जाता है भाई क्या चल रहा है कंटेंट में मतलब सुना जाए तो कुछ भी नहीं हंसी आती है लेकिन इंटरेस्ट आता है यार

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू. Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: Namaskar, main hoon R Madhavan. Aap sun rahe hain Radio All 106.3 FM.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ.
0: Zabardast evening make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: हाँ जी,
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
0: हाय हाय, आई लव दिस ट्रैक यार, एक नंबर। ठीक है, पुराने वाला बहुत अच्छा है, लेकिन इसको रिमिक्स अच्छे से कर दिया यार इन्होंने।

0: ਚੱਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ Sometimes it happens.
1: Aaja tujhe heaven dikhaungi.
2: I don't know what to do. I don't know what to do.
0: Toba, aage kya karu? Garmi ko dekh ke bhi lagta hai jab aap kahin bahar nikalte ho na aapko thoda sa chalna padta hai. Matlab aisi feel aati hai ki toba, aage kya karu?
2: Mausam.
0: डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 36 डिग्री सेल्सियस एंड हाईएस्ट टेम्परेचर आज का 39 था. ह्यूमिडिटी 53% एंड विंड जो है 10 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है. सो ये है मौसम के हाल. अगर आपको अपने दिल का हाल बताना है

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो Ooredoo ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद Ooredoo.
2: टफ काम और भी आसान. कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स. मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले. विजिट कार्मल ग्रुप नाउ.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ.
7: Zabardast evening make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: मैं हूँ विवेकानंद ओबरॉय. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: Maica.
1: Kya gaane? जवाई तेरी माई का सही है यार। मैं कह रही सोने के दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। देखो यार, हनी सिंह के गाने बहुत सारे जो है वो अच्छे भी होते हैं, मजा भी आता है, लेकिन आजकल मुझे ना उनके गानों में वो बात नहीं आ रही है यार। हनी सिंह का वो वाला एरा पसंद है जहां पर गुड़ी नहीं दे रहे ब्राउन रंग ने, वो भाई ऑसम लगते थे यार वो वाले गाने। अभी उतना मतलब बाकी लोगों को हो सकता है आ रहा हो, लेकिन मुझे नहीं आ रहा। कभी इतना गुस्सा आया कि आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, आप इमोशनली फट जाते हो, गुस्से से फट जाते हो, कंप्लीटली अपना टेंपर जो है लूज कर लेते हो। सो जेंजी लिंगो में एक जो है वर्ड यूज किया जाता है, स्लैंग यूज की जाती है, जिसका नाम है क्रैश आउट। एग्जैक्टली, सो यही होता है जब आप अपना कंट्रोल लूज कर देते हो और बहुत सारे गुस्से से फट जाते हो। तो गुस्सा जो है सेहत के लिए हानिकारक होता है हमेशा ही। सो क्या होता है कि गुस्सा ना, मतलब कहने की बात है, हम सब बोलते हैं ना जब गुस्सा आए तो कंट्रोल कर लो, चुप रहो। जब इंसान को गुस्सा आता है ना तो वो फिर बाद में सोचता है, जब हो रहा है, जब वो बोल रहा है, जो कुछ हो रहा है उसी टाइम होता है, बाद में हर इंसान को जो है वो एहसास हो जाता है। लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है कि जब आपको बहुत कुछ बोलना है, क्योंकि गुस्सा आपसे जबान आपकी खुलवाता है, एकदम चाकू की तरह जबान चलती है फिर आपकी जब आपको गुस्सा आया होता है। सो वहां पर जिस इंसान ने कंट्रोल करना सीख लिया, भाई जिंदगी जीत ली यार उसने। क्या बोलते हो? चांस मारेंगे डांस पे बस थोड़ी देर में। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव गौर, कह दे रही है जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah, guys.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
2: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
5: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है, और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स, एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।

अरे यार ये गाना सुन के एक्स की याद आ गई। अरे आपको मुझे थोड़ी 7:47 स्टूडियो की घड़ी पे मैं क्या जी सिमरन कौर आपके है, आपके साथ है और आप मेरे साथ हो। अरे हो ना, हेलो। एक नंबर वाला प्यार जो है वो आप सबने किया है और मैं भी आपसे बहुत सारा प्यार करती हूँ। रेडियो ऑलिव के साथ हर जगह पे हो, मतलब रेडियो तो अभी सुन रहे हो कि आप हमारे सोशल मीडिया पे हो, बताना बनता है, प्रमोट करना बनता है ताकि आप लोग जो है वो हर जगह पे हमारे साथ रहो जहां जहां पे हम हैं। रेडियो के साथ साथ आपके फोन में रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप रेडियो ऑलिव के फैन हो, ताकि आपका जब भी मन करे आप रेडियो ऑलिव जो है वो सुन पाए हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। हदें बिल्कुल बीच में नहीं आती हैं, हदें सरहदें सब पार कर जाती है ये एप्लीकेशन, जहां पे भी आपका सुनने का मन है सुन लीजिए। एंड उसके साथ साथ हमारे रेडियो ऑलिव का जो YouTube चैनल है सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको पॉडकास्ट इंटरव्यूज सुनने का शौक है तो। उसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया पे फनी कंटेंट, इंफॉर्मेशन वाला कंटेंट हम अपलोड करते रहते हैं, कतर से जुड़ी जो नई नई जो भी चीजें हो रही हैं वो सब कुछ अपलोड करते हैं। सो मेक श्योर कि आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे, टिकटॉक पे भी फॉलो कर लो, वहां पे भी हम जो है वो बहुत कुछ अपलोड करते रहते हैं। सो या सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
2: हाय, मैं हूँ सोहाली खान एंड यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: खुशियां आपको आपकी फेवरेट चीज देती है। फेवरेट इंसान तो आपको खुशियां देता है लेकिन वो गम भी देता है ना साथ में, लेकिन फेवरेट चीज आपको सिर्फ खुशियां देती है, जैसे कि मेरे लिए ब्लूबेरी चीज केक है और कुछ लोगों के लिए तिरामिसु है। सो तिरामिसु अगर आपका फेवरेट है तो ये न्यूज जो है, ये बात जो है, अरे माइक किधर जा रहा है यार, इधर आ बेटा। हाँ, सो ये जो है वो आप लोगों के लिए। सो पहली बार इटली जो है वो होस्ट कर रहा है फर्स्ट एवर तिरामिसु रन। जो तिरामिसु रन क्या है कि इसमें 10.1 किलोमीटर जो है वो लोगों को गलियों में जो है वो भागना पड़ेगा, ठीक है। सो जो भी ये फिनिश करता है उसको अनलिमिटेड तिरामिसु की फीस्ट मिलने वाली है। सो ऑफकोर्स इसमें बहुत सारे लोग जो है पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत सारे लोग जो है वो इसको फिनिश करने वाले हैं 10.1 किलोमीटर की। लेकिन ये तिरामिसु वर्ल्ड कप जो है वो बहुत ही एक ग्रैंड फिनाले जो है वो इस तरीके से होने वाला है। सो या काफी अमेजिंग लग रहा है, काफी ज्यादा यू नो स्वीट लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि तिरामिसु रन है यार। यहाँ पे अगर कतर में करवाएं तो हम किस चीज का रन जो है वो करवा सकते हैं, बताइएगा मुझे।
1: सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना,
0: और दर्द ही दर्द है।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
3: अभी बजाएगा ना भिड़ो

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस
0: जीतने के चार रास्ते पहला अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन
1: दूसरा अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है
0: तीसरा नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन और चौथा 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
2: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है यहां हर चोट एक मेडल है हारना मना है और डरना गुनाह है यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं दिलों की धड़कन शोर करती है और ऑडियंस चीयर नहीं रोर करती है बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम इट्स एन इमोशन FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
3: इन एसोसिएशन विद
2: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स
4: आल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
2: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर
5: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया नो मैटर वेयर द गेम इज आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है Culture travels, football connects. And Hiwari is bringing Qatar to the world.
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM. Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM. And Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे

जीते हैं यार, आप तो कमाल हो यार। नाम ले लूं आपके? काम करो फटाफट से, अच्छे बच्चे बन के अपना नाम मुझे बता दो कि आपका नाम क्या है, ठीक है? 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस नंबर पे लिख के भेज दो तो मैं आपका नाम बोल देती हूँ अभी के अभी, जहां पे भी आप घर में गाड़ी में जहां पे भी आप मुझे सुन रहे हो, आपको आपका नाम जो है अब रेडियो पे सुनाई देने वाला है, बस नाम भेज दीजिएगा। नंबर एक बार फिर से बता रही हूँ, 3311063। चलिए अब मैं आप लोगों के नाम जो है वो बोल के भेज रही हूँ। इरफान, डेजी, वेरोनिका, मंजीत, ऐश, सूरज, वसीफ जी, अरशद जी, थैंक यू सो मच, रिहान जी, थैंक यू सो मच, आशिक जी, थैंक यू सो मच, हर्ष जी, थैंक यू सो मच, प्राची, थैंक यू सो मच, अरमान, थैंक यू सो मच, रिंकल, थैंक यू सो मच, सफदर जी, थैंक यू सो मच, नुसरत, रिमशा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, मयंक, करण, ओके बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है ये नाम की, मयंक, करण, मोनिका, दिव्या, अमित, चार्विक, अंकित, रिचर्ड, खेमराज, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सबके मैसेजेस के लिए क्विकली बड़ा से लिखते जाइए यार। प्राची जी, थैंक यू सो मच, ऑलरेडी आपका नाम ले चुके, फिलिप जी, थैंक यू सो मच, अब्रार, थैंक यू सो मच, रवि, साजिद, संदू, संतीश, सतीश, जुल्फी, शशिकांत, नजीमुल्ला, हाय हाय सांसें चढ़ गई यार नाम ले लेके मुझे, थैंक यू, क्विकली नाम लिख के भेजिए 3311063 पर। आसिफ जी, थैंक यू सो मच, नदीम जी, थैंक यू सो मच, हाजरा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया बेटा, अब थैंक यू लिख के भेजो और साथ में अपना फेवरेट वाला इमोजी बना दो। आहा हा, दिल तोड़ गया, मुझे छोड़ गया पिछले महीने की 26 को। सही है यार, अपने अपने एक्सों को याद कर लो आप।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे
2: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
7: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

0: मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
2: देखो यार, अगर आज किसी का हैप्पी वाला बर्थडे है तो बेबी गाने बजवा देंगे, यो यो हनी सिंह गवा देंगे. हैप्पी बर्थडे है जी. 4, 3, 2, 1, and go.

0: हां जी किसके डैडी की बात हो रही थी मैं क्या चीज सुने होंगे दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए जो कि आप मुझे भेज रहे हैं अब टाइम आ गया है कि हम थोड़ा सा ज्ञान बांटे मुझे बहुत मजा आता है ज्ञान बांटने में
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
0: बहुत प्यारी चीज मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी कि जब लाइफ में आप कोई डिसीजन लेने लगते हो ना तो राइट डिसीजन क्या है वो आपको कैसा पता लगे क्योंकि अपा ना शशोपंज जो हुन्ने हैं शशोपंज पंजाबी च कह देने मतलब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हो कंफ्यूजन होता है आपको कि यार ये चीज जो आप कर रहे हो ये फैसला जो आप ले रहे हो ये सही है या गलत है। देखिए जब किसी फैसले को लेके आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए आपको लगे कि ओके फाइनली ये मैंने कर दिया ऐसा नहीं है कि बाकी लोग अग्री हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं आपकी बॉडी आपको क्या रिएक्शन दे रही है आपकी बॉडी जो है किस तरह से आपको जो है वो यू नो फीलिंग दे रही है वो चीज़ मैटर करती है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये लंबी सांस आ रही है ऐसे कि ठीक है यार स्यापा नहीं बढ़िया तो मतलब आप राइट फैसला ले रहे हो वो पे मत जाइए कि हाँ ये चार लोग अरे वो उसका मुँह रूठा है हर कोई फूफा रहेगा तुम्हारी जिंदगी में तुमको क्या चाहिए ये तुम्हारी बॉडी तुम्हारी वाइब वो बताती है यार। सो अगर आप कहीं पे अभी फंस रहे हो आपको लग रहा है कि यार ये मैंने क्या सही किया आपको क्या लग रहा है अच्छा लग रहा है बॉडी रिलैक्स हो गई है लाइट लग रहा है दैट्स इट अगर नहीं है तो फिर थोड़ा सा सोच लो

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
2: अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए फ्री कैश वाउचर्स और डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
4: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million rials cash prizes.
5: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 rials growth पर पाइए एक coupon.
4: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
5: नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
1: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
2: सिमरन के साथ।
3: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: बेबी चलो अब आपकी बॉलीवुड की नॉलेज को चेक करते हैं और खेलते हैं
1: रेडियो ऑलिव पर।
2: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
0: इस एक चुटकी गाने को जरा सुनिए और मुझे बताइए कौन सा गाना है। अगर आपको पता लग गया है तो फटाफट से अपना वॉइस नोट रिकॉर्ड करो। नहीं नहीं लिखना नहीं है, वॉइस नोट रिकॉर्ड करो। हे सिमरन अपना नाम बताओ और गाना गा के बताना है बता दो, गाना ऐसे भी बताना है तो भी बता सकते हो। भेज दो 3311063 पर। एक बार वापस से चलो इंतजार कर रही है, सुनते रहो रेडियो ऑलिव गोल्ड, कहते रहो जियो बिंदास।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: गानों से म्यूजिक से तो प्यार हो जाता है, बस वही नॉलेज आपकी चेक करती हूँ कि आपका प्यार कितना है।
1: रेडियो ओलिव पर
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: एक चुटकी सॉन्ग में मैंने आपको एक चुटकी वर गाना सुनाया था, और आप लोग कमाल हो यार।
3: अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, चन्ना मेरे यह गाना है, ये रह दिले मुश्किल मूवी का गाना है। रेडियो ऑलिव जियो बिंदास बिलिन अपटे।
0: थैंक यू सो मच अपटे साहब, बिल्कुल सही पहचाने हो यार।

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: हाँ जी, मजे आगे कि नहीं आगे? अरे जाने से पहले शो के आखिरी दो गाने बताती हूँ।
1: जन्म जन्म जन्म साथ चलना यूं, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही।
0: और ये फिल्म के बारे में शायद आपने सुना भी नहीं होगा, इतना सुपर नानी से बहुत ही अंडररेटेड गाना है। खुशहाल की कितनी मीठी आवाज है यार। चलो ये गाने तो आप सुनने वाले हैं, लेकिन सिमरन कौर को आप कल शाम 5 बजे सुनने वाले हैं, क्योंकि सिमरन कौर की यहाँ से गल्ली माने का टाइम आ चुका है। अगले 2 घंटे आप एंजॉय करिए मिडनाइट लाउंज, खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। वी नाइस टू एवरीवन यार, गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे

Good evening. You are listening Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai Midnight Lounge. So, aaj ek bahut interesting sawal se shuruaat karte hain ki kab aapko pehli baar realize hua tha ki bade log na sab kuch nahi jante. Matlab bachpan mein to lagta hi tha, par papa sab jante hain, teachers ko sab pata hai, office ke boss sab jante hain aur 30-35 saal ke log to life ke final, you know, boss hote hain. Lekin फिर हम खुद बड़े हो गए और एक दिन अचानक रियलाइज होता है कि अरे यार, सब लोग तो बस मैनेज ही कर रहे हैं. इस थॉट पर बेस्ड है आज की किताब. द नेम इज एंशियस पीपल. स्वीडिश ऑथर हैं और ऑनेस्टली बताती हूँ, ये किताब मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि ये परफेक्ट लोगों की स्टोरी नहीं है, ये हम सबकी स्टोरी है. स्टोरी शुरू होती है एक फेल्ड बैंक रॉबर से. एक अपार्टमेंट व्यूइंग चल रहा होता है और कुछ स्ट्रेंजर्स एक जगह फंस जाते हैं और फिर धीरे धीरे पता चलता है कि हर इंसान के पास एक हिडन स्ट्रगल है. कोई पैसे को लेकर स्ट्रेस में है, कोई पेरेंटिंग को लेकर, कोई रिलेशनशिप को लेकर, कोई फ्यूचर को लेकर. और सबसे बड़ा फैक्ट बताती हूँ कि WHO के अकॉर्डिंग एंजाइटी जो है वो दुनिया की सबसे कॉमन मेंटल हेल्थ चैलेंजेस में से एक है. लेकिन फनी बात पता है क्या है, हम सब सोचते हैं कि सिर्फ हम ही कंफ्यूज हैं, बाकी सबकी लाइफ सॉर्टेड है, जबकि रियलिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है. और शायद इसीलिए किताब दुनिया भर में इतनी पॉपुलर है क्योंकि ये याद दिलाती है कि परफेक्शन एग्जिस्ट करता है. हम सब बस अपनी अपनी कहानी में बेस्ट पॉसिबल वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हैं. तो आज का सवाल भी बस यही है कि कब आपको रियलाइज़ हुआ था कि अडल्ट्स भी सब कुछ जानते हैं. और वो मोमेंट जब आपको लगा था कि यार सब बस मैनेज ही कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं जानता. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज।
0: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद योर शो का नाम ये ऑफ़ कॉस्मिक नाइट लाउंज. भाई बहुत बार हम कोशिश करते हैं कि यार मतलब ठीक है खुश रह लेंगे लोगों को दिखाने के लिए, बट समटाइम्स भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं एक्टिंग कर पाते. सेम लाइक विद मी, मैं बहुत ही सिलेक्टिवली सोशल होती हूँ. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वाइब मैच करना बहुत ज़रूरी है. व्हाट अबाउट यू, आपको क्या लगता है यार? सो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले यू नो एवरीबडी इज़ थिंकिंग अबाउट 2016, क्योंकि 2026 चल रहा है तो लोग 10 साल पहले के बारे में सोचते हैं. आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहे होते हैं. हर दूसरी रील में आपको दिखेगा टेक मी बैक टू 2016, 2016 वॉज डिफरेंट, लाइफ वॉज सिम्पलर इन 2016. अब सवाल ये है कि क्या 2016 सच में इतना परफेक्ट था? भाई ये फिर हमें वो वर्जन याद दिला रहा होता है जो उस वक्त हम खुद थे. सोचिए 2016 में हमारी प्रॉब्लम अलग थी, सपने अलग थे, प्लेलिस्ट अलग थी, दोस्त का मतलब सर्कल अलग था और शायद हम भी थोड़े से अलग थे. साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि नॉस्टैल्जिया जो है वो सैडनेस नहीं होती, नॉस्टैल्जिया एक्चुअली एक इमोशनल कम्फर्ट होता है. जब हम 2026 में है तो थोड़ा सा फास्ट लगने लगा है सब कुछ, तो दिमाग ऑटोमेटिकली उन मोमेंट्स को याद करता है जहां पर सब कुछ थोड़ा सा सिंपल लगता था. और आज से 10 साल बाद मतलब हो सकता है हम 2026 को याद कर रहे होंगे जब हम 2036 में होंगे और कह रहे होंगे कि यार क्या दिन थे, लाइफ का सिस्टम भी अलग था, बहुत अजीब था. मतलब ऐसा होता है जब हम किसी वक्त में होते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं समझते और जब गुजर जाता है तो उसकी याद ज़्यादा आती है. सो आप मुझे बताओ कि अगर आप एक साल के लिए टाइम मशीन में जा सको तो कौन सा साल आप जाओगे वापस? 3311063 इज़ माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास. Oh, oh, oh.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।
1: ये है मिडनाइट लव।
2: ये है मिडनाइट

So, आज एक फिल्म लवर टॉपिक की बात करते हैं और मुझे लगता है कि हर लिसनर का आंसर अलग होगा. सोचिए आप मूवी देखने बैठे, आपको हीरो का नाम नहीं पता, स्टोरी का आइडिया नहीं, ट्रेलर भी देखा नहीं आपने, फिर भी पहले 5 मिनट में आप डिसाइड कर लेते हो कि देखते हैं या फिर स्किप करते हैं. क्यों? क्योंकि ओपनिंग स्क्रीन जो है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे जो सीन होता है वो बहुत पावरफुल होता है. और फिल्म जो है वो स्कूल में एक बात कही जाती थी कि ए ग्रेट ओपनिंग डजंट गिव आंसर, मतलब क्रिएट करनी पड़ती है क्यूरोसिटी, और क्यूरोसिटी जो है दुनिया की सबसे पावरफुल इमोशंस में से एक है. सो स्टीवन स्पिलबर्ग ने एक बार कहा था कि ऑडियंस को पहले मिनट में रीजन मिल जाना चाहिए कि वो स्टोरी के साथ क्यों रहे. इसीलिए ग्रेट ओपनिंग सीन्स जो होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं, कुछ मिस्ट्री क्रिएट करते हैं, कुछ एक्साइटमेंट, कुछ इमोशंस, और कुछ बस एक सिंपल सवाल छोड़ देते हैं जिसका आंसर हम पूरी फिल्म देखकर ही ढूंढ पाते हैं. सो लाइफ भी थोड़ी सी ना मूवी जैसी है, हम सब अपनी स्टोरी के बीच में हैं, किसी को एंडिंग नहीं पता, बस क्यूरोसिटी है. और आज का सवाल भी आपसे यही है कि कौन सी फिल्म की ओपनिंग सीन आप कभी नहीं भूल सकते. वैसे बाय द वे कई सारी ऐसी शाहरुख की मूवीज हैं जो हर किसी को याद रह जाती है. बाय द वे आपकी फेवरेट मूवी कौन सी थी जो स्टार्टिंग में ही आपको लग रहा था कि यार ये मूवी तो अब पूरी खत्म करेंगे. सो 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल इज स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लव।

और अब एक टॉपिक जो शायद इस वक्त आधे लिसनर्स पर अप्लाई हो रहा है। रात के 11 बज रहे हो और नींद आ रही है, आंखें थक चुकी हैं, कल ऑफिस भी जाना है, लेकिन फिर भी बस एक रील और, एक वीडियो और, एक एपिसोड और, ऐसे करते करते आप रात का 1 बजा देते हो। सो आई विल से कि भाई इससे दूर रहिए, क्योंकि मैं तो इस ट्रैप में बहुत बार फंसी हूँ। ये क्यों होता है? इसके पीछे रिसर्चर्स कहते हैं कि इसके लिए एक टर्म बनाई गई है जिसे कहते हैं रिवेंज बेड टाइम प्रोकेस्टिनेशन। मतलब नाम थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। पूरे दिन हम दूसरों के स्केड्यूल पर जीते हैं, ऑफिस, मीटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और रात को लगता है कि अब ये वक्त ना सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इसीलिए हम स्लीप को पोस्टपोन करते रहते हैं, थोड़ा और अपना टाइम फील करना चाहते हैं। और ऑनेस्टली ये सिर्फ लेजीनेस नहीं है, ये मॉडर्न लाइफ का साइड इफेक्ट है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि स्लीप कोई लग्जरी तो है नहीं, ब्रेन की डेली सर्विसेज हैं, और अगर सर्विसेज मिस करोगे तो सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो आज रात का सवाल भी आपसे यही है कि सच सच बताना, सोने से पहले आपकी लास्ट स्क्रीन जो टाइम होता है वो कितना होता है, और आप क्या देख रहे होते हो? इंस्टाग्राम, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स या फिर व्हाट्सएप पे लास्ट सीन चेक करना आपका डेली रूटीन है? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, ये है मिडनाइट लाउंज। स्टे ट्यून्ड, जियो, बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Yeah, midnight love. Yeah, midnight.

Welcome back. You are listening to Radio Olive 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai Midnight Lounge. So, aaj ek aur kitab ki baat karte hain. Title sunte hi lagta hai ki shayad hi koi fantasy story hogi. Aur haan, hai bhi. Lekin sirf fantasy nahi, ye belongings ki story hai. Acceptance ki story hai. Aur un logo ki story hai jo kahin fit hi nahi hote. So, kitab ka naam hai The House in the Cerulean Sea. अब ऑथर है टीजे जो कि एक यू नो ये नॉवल जो है दुनिया भर में रीडर्स की फेवरेट किताब बन गई थी. क्यों? क्योंकि एक सिंपल सवाल पूछती है, क्या फैमिली सिर्फ ब्लड रिलेशन से बनती है या फिर उन लोगों से भी बनती है जो हमें एक्सेप्ट करते हैं. सो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग की सबसे बेसिक इमोशनल नीड में से एक है बिलोंगिंग्स, यानी हमें किसी ग्रुप का पार्ट फील करना होता है. इसीलिए स्कूल में फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट लगती है, इसीलिए ऑफिस में टीम कल्चर मैटर करता है और इसीलिए कभी कभी स्ट्रेंजर्स भी फैमिली जैसे लगने लगते हैं. सो मुझे लगता है कि हर इंसान को लाइफ में एक जगह चाहिए जहां पर वो एक्टिंग ना करे, जहां वो बस खुद हो सके. तो आज मेरा आपसे सवाल भी यही है कि आपके लिए फैमिली का मतलब क्या है? सिर्फ ब्लड रिलेशन या वो लोग मुश्किल वक्त में हमेशा आपके साथ रहे हैं या आपने उन्हें हमेशा अपने साथ देखा है? 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. ये है मिडनाइट लाउंज. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: ये है Midnight Lounge.
1: This hour is brought to you by
2: Homes R Us. We complete your home.
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, Radio Olive 106.3 FM.

वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. एक फन चैलेंज करते हैं. म्यूजिक लवर्स तो बिल्कुल रेडी हो जाइए क्योंकि आप म्यूजिक से रिलेटेड सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर कोई जानते हैं तो वो क्या है. मैं अपनी तरफ से एक शेयर करती हूँ बिकॉज आई ऑल्सो लव म्यूजिक. नो, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि म्यूजिक सुनते वक्त हमारा जो ब्रेन है वो ऑलमोस्ट पूरा एक्टिव हो जाता है. हमें मेमोरी भी हमारी पूरी एक्टिव हो जाती है, इमोशंस भी बहुत ही अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं, क्रिएटिविटी भी और मूवमेंट भी. यानी म्यूजिक सिर्फ कानों के लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रेन के लिए वर्कआउट करता है. और एक और अमेजिंग फैक्ट बताती हूँ. दुनिया की सबसे पुरानी नोन मेलोडी लगभग 3400 साल पुरानी थी. सोचिए, एम्पायर्स बदल गए, कंट्रीज बदल गई, लैंग्वेजेस बदल गई, लेकिन म्यूजिक सर्वाइव कर गया भाई. और शायद इसीलिए म्यूजिक जो है वो यूनिवर्सल है. आपको लिरिक्स समझ आए या ना आए, इमोशन समझ आए या ना आए, एक स्पैनिश गाना, एक कोक स्टूडियो का कोई ट्रैक सब दिल तक पहुंच जाता है.

दर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। मॉर्निंग आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3।

93FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam hai, yes, of course, Midnight Lounge. So, important sa sawal hai ki school ne hume bahut kuch sikhaya. Maths, science, history, geography. Lekin, kya school ne hume, kuch aisa sikhaya jo hum actually stress handle karna seekh paaye, ya fir communication seekh paaye, ya fir first aid. कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कूल ने नहीं सिखाई, इवन पैसा मैनेज करना भी नहीं सिखाया. सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट में बार बार मेंशन होता है कि फ्यूचर जॉब्स के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं, ह्यूमन स्किल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडैप्टेबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस. और ऑनेस्टली बताऊँ, लाइफ की कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स जो हैं वो क्लासरूम के बाहर ही होते हैं. इंटरव्यूज़, रिलेशनशिप्स, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, और इनमें सिलेबस नहीं मिलता. सो आप मुझे बताइए कि अगर आपको स्कूल सिलेबस में एक सब्जेक्ट ऐड करना हो तो वो क्या होगा? आपको लगता है कि यार ये तो बच्चों को सिखाना ही चाहिए, जो हमने मिस कर दिया या फिर जो आपके बच्चे स्कूल जाते हैं वो मिस ना करें. 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio. Bindas.

सो भाई आज की रात का आखिरी टॉपिक है, आखिरी थॉट है और वर्ड्स हैं. मतलब हम रोज ना हजारों वर्ड्स यूज करते हैं, सो वर्ड्स की बात करते हैं. लेकिन कुछ वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, उनके अंदर पूरी मतलब फीलिंग छुपी हुई होती है. जैसे उर्दू का एक वर्ड है सुकून, इंग्लिश में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है. जापानीज में एक वर्ड है इकिगाई, मीनिंग द रीजन यू वेक अप इन द मॉर्निंग. पोर्चुगीज में एक वर्ड है जिसको साउडेड कहते हैं, यानी किसी या किसी चीज़ की खूबसूरत कमी महसूस करना. मतलब आई वॉज लर्निंग सम न्यू वर्ड्स और मुझे लगा कि यार कितने सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर कुछ नए वर्ड्स हैं जिनका परफेक्ट ट्रांसलेशन दूसरी लैंग्वेज में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हर कल्चर कुछ इमोशंस को अलग तरीके से फील करता है. और मुझे लगता है कि इसीलिए लैंग्वेजेस ब्यूटीफुल होती हैं, वो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं करती, वो इमोशंस को शेप करती हैं. और इन शेप करते करते आई वॉज फीलिंग कि यार आज रात आपसे बात करते करते कैसे टाइम निकल गया पता ही नहीं चला. सो आपका फेवरेट वर्ड कौन सा है और क्यों? हो सकता है कि वो हिंदी का हो, उर्दू का हो, मलयालम का हो या इंग्लिश का हो या किसी और लैंग्वेज का, लेकिन उस वर्ड के साथ एक फीलिंग ज़रूर जुड़ी होगी. सो फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा और सुनते रहिए योर फेवरेट रेडियो स्टेशन. दिस इज रेडियो ऑल 106.3 FM. बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।
3: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

listening to Radio Olive 106.3 FM. Radio Olive. Geo.

सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।